सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल पर 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026 ईस्वी। सुबह की 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को

0: में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games.

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, जीवन एक यात्रा है जहां कभी सुख की धूप होती है तो कभी दुख की छांव।

लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में भक्ति, विश्वास और सद्कर्म को अपना साथी बना लेता है, उसके जीवन का हर मार्ग सरल हो जाता है। कहा भी गया है, मन मंदिर में ज्योति जलाओ, हरि को अपने पास बुलाओ। जहाँ प्रेम और श्रद्धा बसती है, वहीं ईश्वर की कृपा बरसती है। श्रोताओ, धन से बड़ा संतोष है और शक्ति से बड़ी विनम्रता, और संसार में सबसे बड़ा सुख है प्रभु के नाम का स्मरण। तो आइए अपने मन के द्वार खोलिए, सभी चिंताओं को कुछ पल के लिए विराम दीजिए और जुड़ जाइए भक्ति, अध्यात्म और आत्म शांति की इस सुंदर यात्रा में। श्रोताओं, किसी भी शुभ कार्य का आरंभ प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के स्मरण के बिना अधूरा माना जाता है। गणपति बुद्धि के दाता हैं, शुभता के प्रतीक हैं और भक्तों के सभी विघ्न दूर करने वाले देव हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव बन जाता है। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं श्री गणेश जी की पावन आरती के साथ।

श्रोताओ, मर्यादा, त्याग, सत्य और आदर्श का नाम है प्रभु श्री राम। श्री राम जीवन जीने की कला है। जब जब मन भटकता है, राम नाम मन को स्थिर करता है। जब जब जीवन में संघर्ष आता है, रामचरित हमें धैर्य और साहस सिखाता है। कहा गया है, राम नाम मन दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू, जो चाहसी उजियार। तो आइए प्रभु श्री राम की मधुर स्तुति सुनते हैं।

संकट मोचन भक्त वत्सल और अतुलित बल धाम श्री हनुमान जी की भक्ति मनुष्य के भीतर साहस और आत्मविश्वास का संचार करती है। श्रोताओं, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि यदि मन में विश्वास हो और हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती है। जीवन में भय, चिंता और निराशा जब भी आए, हनुमान जी का स्मरण मन को शक्ति देता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिम हरहु कलेश विकार। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी की एक भक्तिमय रचना।

श्रुतौ माँ संपूर्ण सृष्टि की शक्ति है। माँ दुर्गा भक्तों की रक्षा करने वाली, दुखों का नाश करने वाली और जीवन में नई ऊर्जा भरने वाली आदि शक्ति हैं। जब संसार में अंधकार बढ़ता है तब माँ शक्ति बनकर अपने भक्तों का मार्ग प्रकाशित करती है। जीवन में आत्मबल चाहिए तो माँ का स्मरण कीजिए, मन में विश्वास चाहिए तो माँ के चरणों में सिर झुकाइए।

श्रोताओं, श्री कृष्ण प्रेम हैं, करुणा हैं, संगीत हैं और जीवन का मधुर संदेश हैं। गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य को कर्म, धर्म और आत्मा का अद्भुत ज्ञान दिया। श्री कृष्ण अपनी लीला से सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली ध्वनि है। जो बीत गया उसे सोचकर दुखी मत हो, और जो आने वाला है उससे भयभीत मत हो। वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो आइए श्री कृष्ण की मधुर भक्ति रचना सुनते हैं।

श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण की मधुर भक्ति रचना के साथ अब आज के वंदना कार्यक्रम को यहीं विराम देने का समय आ गया है। मित्रों, जीवन की भागदौड़ में मन कई बार थक जाता है और परिस्थितियां हमें भीतर से विचलित कर देती हैं। ऐसे समय में भक्ति ही वह शक्ति बनती है जो मन को संभालती है, आत्मा को शांति देती है और जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। तो आइए अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सत्य और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूजा है और यही सच्चा धर्म भी है। ईश्वर करे आपके घर आंगन में सुख, शांति और मंगल बना रहे। प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संजीव कालिया को वंदना कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन। आज आप सुनेंगे स्वामी धर्मेंद्र आनंद जी के विचार सेवा विषय पर।
1: आज इस संसार में रहकर हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन काफ़ी बार इंसान का देखना और सुनना दोनों ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में इंसान किसी को देखता है, किसी को सुनता है, किसी बात को किसी के माध्यम से वो सुन पाता है, तो इंसान उसी पे विश्वास कर बैठता है कि यही सत्य है, और उसी उस बात को सुनकर हमारे मन के अंदर, हमारे इस दिल के अंदर, हमारे इस जहन के अंदर एक गलत फहमी बैठ जाती है। देखा तो सुग्रीव ने भी था, जिस वक्त बाली उस गुफा में अंदर उस राक्षस को मारने के लिए गया, और जैसे ही उसका अपना भाई बाहर नहीं आता है तो एक खून निकलता हुआ बाहर देखता और उसी से ये समझ लेता है कि शायद मेरे भाई की उस राक्षस ने हत्या कर दी है, और उसी गुफा के आगे पत्थर लगाकर वापस आ जाता है। अब देखा तो सुग्रीव ने भी था, घर वापस अपने राज्य में आता है, अपने राजपाट पे बैठता है और उसी पे विश्वास कर लेता है कि शायद मेरा भाई मर चुका है। अब ये देखिए, व्यक्ति जिस सोच को लेकर कहीं पे जाता है, जिस सोच को लेकर किसी के समक्ष पहुंचता है, आगे से ही उस इंसान को वैसा ही नजर आता है। जिस वक्त बाली उस गुफा के अंदर प्रवेश किया था उस राक्षस के साथ, तो बड़ी क्रोध अवस्था में था, बड़ा क्रोधित था वो, और जैसे बाहर निकला उसने देखा आकर और भी क्रोध बढ़ गया, और अपने भाई के सामने आकर जब उसे सिंहासन पे बैठा हुआ देखा तो और क्रोध बढ़ गया कि जैसी स्थिति में वो गया था वैसी ही स्थिति के अंदर जब वो बाहर आया और वैसा ही उसका आवरण रहा, वैसी उसकी सोच रही।

0: देखा भाई को सिंहासन पे बैठा हुआ, लेकिन वो इस बात को सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि ये किन परिस्थितियों के अंदर सिंहासन पे बैठा है। कहने का मतलब ये कि हमें किसी भी ऐसी घटना को देखकर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये घटना सत्य है। हो सकता है वो किन परिस्थितियों के अंदर वो घटना घटित हुई है, या तो वो व्यक्ति जिसके साथ घटित हो रही हो वो व्यक्ति जानता है, या वो ईश्वर जानता है। इसीलिए जब तक आपके पास वो विवेक नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया विवेक, वो बुद्धि नहीं है, तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। और इंसान का विवेक जो है वो जागृत कब हो सकता है, जब उसे उस ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। और जब उस इंसान को वो अंदर की भक्ति मिलती है, तभी उस भक्ति के माध्यम से उस ईश्वरीय सत्ता को और इस ईश्वर की सृष्टि को समझ सकता है। आप देखिए कि महापुरुषों ने भी सृष्टि को देखा है, और इस सृष्टि का हर एक वस्तु का उन्होंने उपयोग किया है, लेकिन उनका यूज करना, उनका प्रयोग करना सभी के लिए सार्थक रहा। एक डॉक्टर भी है, वो भी एक कैंची का, औजारों का इस्तेमाल करता है, और एक कसाई, एक ऐसा व्यक्ति भी करता है जो किसी की हत्या करने के लिए यूज करता है। तो एक ही औजार है, तो एक ही वो वस्तु, लेकिन उसका यूज कैसे है। अगर आपके पास विवेक है तो आप उन साधनों का सही इस्तेमाल कर पाओगे, अगर आपके पास विवेक नहीं है तो आप उसका मिसयूज ही करोगे। इसीलिए प्रत्येक इंसान को यही एक संदेश है, ये समझाना चाहते हैं कि आपके पास अगर उस ईश्वर की कृपा से ऐसे साधन हैं जिससे आप समाज में रहकर किसी का भला कर सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि नर सेवा से बढ़कर, नर सेवा ही नारायण सेवा है, और ये नर सेवा से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। और ऐसे कार्यों के लिए प्रत्येक इंसान को जो इस मानवीय आवरण को धारण कर चुका है, जिसके पास ये मानव का तन है, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही संदेश है कि आपके पास ये आखिरी मौका है। और इस तन के रहते, शरीर के रहते रहते आप एक ऐसा कार्य कर जाए कि लोग आपको याद करें, और उसी इंसान का जीवन सार्थक है, उसी इंसान का जीवन इस संसार के अंदर सफल है, जो अपने इस जीवन के रहते रहते ऐसे पुण्य के कार्य कर सकता है। और समाज में आज अगर आवश्यकता है तो ऐसे ही कार्यकर्ताओं की, ऐसे ही मानव सेवा करने के लिए लोगों की, और उसमें हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि समाज, ये राष्ट्र हम सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है।
1: श्रोताओं, अभी आप आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे चैनल से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद खेतिहर अवस्थे कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी होगी, फसलों में सूक्ष्म तत्वों का महत्व विषय पर। श्री रामचरित मानस का पाठ मानसगान कार्यक्रम में आप सुनेंगे 7:20 पर। आज आप सुनेंगे भाग 258 का पाठ। सामाजिक विषयों पर चर्चा और फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुप्रभात होगा 7:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे 8:45 पर। मरुमंगल कार्यक्रम में 9:10 पर कलाकार रहेंगे बैरागनाथ। युगल हिंदी फिल्मी गीत सुनिए 9:30 पर। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम गा मेरे मन गा आप सुनेंगे 10:00। फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतमाला होगा 11:00। सैनिकों के लिए यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में गजलें सुनिए 12:30 पर। खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी होगी, मूंग की उन्नत खेती कैसे करें विषय पर, समय रहेगा 12:50 का। घरांगन कार्यक्रम होगा 1:05 पर। चर्चा के विषय रहेंगे गुणों की खान नीम, नारी परिवार की धुरी

अरंडी के तेल के फायदे, दहेज लेना व देना, कानूनी अपराध और काम की बातें। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे दोपहर बाद 3 से। ये कार्यक्रम केवल न्यूज़ ऑन एयर ऐप और एफएम पर प्रसारित रहेंगे। मीडियम वेव पर रखरखाव के चलते प्रसारण बंद रहेगा। नौजवान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी संध्या 5। जानकारी के विषय रहेंगे जीवन में शिक्षा का महत्व, उस्ताद योजना, गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल, युवा देश का भविष्य और आज का इतिहास। सराइकी प्रोग्राम का वक्त रहेगा संध्या 6:05। ग्रामीण परिवारों के लिए कार्यक्रम चौपाल में गीतारू गजरो आप सुनेंगे संध्या 7। पेशकश रमेश चावरिया की रहेगी। उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। फिल्म संगीत सुनिए संध्या 7:45 पर और कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8। हेलो मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया और प्रस्तुतकर्ता होंगे दुर्गा राम। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर और सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। श्रोताओं अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: कटक शकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपत प्रबंधने सिक्किमा रक्षक दलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनांकपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य 45 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयंत्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 33 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीयर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तरपश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपयक्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्तिचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लैटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक

0: की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a 3-day visit to Karnataka, Goa and Kerala beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka. The CBI has arrested Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. Giribala is Twisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made in Bhopal yesterday. Earlier, a CBI team questioned and searched Giribala's home for nearly 7 hours, following which she was arrested. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandavia, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sporting facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid ul-Azha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test

0: on Sunday can be downloaded from the official website of NDA, cuet.nta.nic.in. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
1: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
0: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. Air India has extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costly fuel and airspace curbs, which pushed up their operational costs. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has said it targeted an American airbase in the region after fresh U.S. strikes on southern Iran overnight. Kuwait, which hosts a U.S. base, said it had intercepted hostile missile and drone threats, but did not confirm the target. In IPL cricket, Gujarat Titans and Rajasthan Royals will meet in Qualifier 2 at New Chandigarh this evening. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And that is the end of this news bulletin.
2: Medium wave 326.79 meter. यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में तरक्की पसंद काश्तकार भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी का विषय है फसलों में पोषक तत्वों का महत्व। लीजिए सुनिए।
3: किसान भाइयों, मेनखा और पशुआमजिया भोजन की आवश्यकता पड़े, बियाई पौधा ने भी विकास करने वास्ते खुराक की आवश्यकता पड़े। आप बात करा फसलों ने संतुलित भोजन किया उपलब्ध कराव। किसान भाइयों, बुंटो हवा पानी और धूप शू भी आपको की भोजन तैयार कर लेवे, परंतु पौधों स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार देवे इन वास्ते आपने भी अलग शूमी के भोजन के और पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करा बां सारे पोषक तत्वों की जिका एक पौधे के जीवन चक्र ने पूरा करे। जीवन चक्र पूरा करने वास्ते कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, तांबा, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन कई पोषक तत्वों की जरूरत होवे। मुख्य पोषक तत्वों की बात करा तो बिंग में नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पौधे ने किया पोषित करे बी वास्ते बतावा भी पौधा में जिको हरो रंग आवे वो नाइट्रोजन आवे और पौधों तेजी बढ़वार करे इंगमा भी नाइट्रोजन को संयोग होवे। बुंटे में प्रोटीन, विटामिन और कोशिका में रस बनाने वास्ते भी मदद करे। अब आपा किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी है इंगो पतो किया कर सका तो बी वास्ते आप देखांगा कि पौधा को जिको पत्तियाँ हैं बांगो रंग पीलो पड़ जाए, पत्तियां छोटी रह जावे, पौधा में बढ़वार को निकरे। नाइट्रोजन की कमी दूर करने वास्ते यूरिया बिजाई के समय देनी होवे, बिंगे बाद पौधे की बढ़वार वास्ते एक दो बार और छिड़काव होवे। दूसरे पोषक तत्व की बात करा जिको जरूरी है बी वास्ते फास्फोरस। जी हाँ, फास्फोरस जड़ा ने मजबूत बनावे, तने ने मजबूत बनावे, फूल जल्दी निकाले, फसल ने जल्दी पकावे। बुंटे के माँ प्रोटीन और वसा बनावे। कमी को पतो किया चल है जिया फसल है बिंगी।

0: पत्तियां जी की है, वह छोटी रह जाएगी और पत्तियां के आसे पासे बैंगनी लाल रंगा धब्बा बन जावे, बीव आपा ने ठा पड़ जाएगो भी फास्फोरस की कमी है। कमी दूर करने वास्ते आपा ने फास्फोरस युक्त खाद जिया DAP सिंगल सुपर फास्फेट को प्रयोग मिट्टी की जांच करा के करांगा। फसल बढ़वार के समय फास्फोरस काम को नहीं देवे, इन वास्ते जिके समय आपा फसल की बिजाई करा भी समय ही फास्फोरस को उपयोग कर सका। अब बात करा आपा पोटास की। पोटास जी की है, बा पत्तियां गे माँ जी को भोजन बनाए, बिना पौधे के हर अंग तई जिया जड़ में तने में लिजाण वास्ते सहायक हुए। फसलों में रोग ना लगे, जिया पालो सूखो खराब ना करे, बीहू भी आ रक्षा करे। तने ने मजबूत बनाने के सागे ही जिकी फसल है बिगी गुणवत्ता ने कायम रखे। पोटैश की कमी को पतो आपा ने चले पौधो कमजोर हो सी, क्योंकि बिंगे माँ पानी की मात्रा कम हुए, तनो कमजोर हो जाए और जिये ही तेज हवा चले तो पौधो नीचे भी गिर जाए। पोटैश की कमी से फसल की गुणवत्ता को नहीं रवे। पोटास की कमी पूर्ति करने वास्ते आपा ने पोटास युक्त खाद जिया म्यूरेटो पोटास को प्रयोग मिट्टी जांच के बाद आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इनके अलावा भी छोटा छोटा कई पोषक तत्व है जका ने आपा फसल में देने की आवश्यकता हुए। बिंगमा जिया जस्तो है, जिंक सल्फेट, लोह है, फेरस सल्फेट, मैग्नीज है, मिमा मैग्नीज सल्फेट, बोरोन वास्ते बोरेक्स, तांबे वास्ते कॉपर सल्फेट। किसान भाइयों ध्यान में रखने की बात आ है कि जड़ों को विकास अधिक फुटाव वास्ते फास्फोरस और पोटास बुआई के टाइम पर ही देने आपा, और नाइट्रोजन को की भाग बुआई के समय और बिंगे बाद जरूरत के हिसाब में 2 या 3 बार आपा ने छिड़काव करना हो सी। किसान भाइयों आपा पोषक तत्वों की बात करी तो आ पोषक तत्वों का उपयोग आपा सर्वप्रथम मिट्टी जांच करवा के ही करांगा, बीहू आपा ने ठा पड़ जी सी भाई किसे पोषक तत्व की इंगमा कमी है। तो अबे मैं चालू राम राम सा।
1: श्रोताओं, खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में अभी प्रगतिशील किसान भाई उपयोगी जानकारी सुन रहे थे। विषय था फसलों में पोषक तत्वों का महत्व। और लीजिए अब सुनिए प्रकाश चंद्र शर्मा के स्वर में एक लोक भजन।

श्रोताओं अभी अपनी प्रकाश चंद्र शर्मा के स्वर में लोक भजन सुना। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:20 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 258 का पाठ, स्वर जगजीत सिंह और सुरेश वाडकर का है।

अरण्य में सीता की खोज में भटकते श्रीराम और लक्ष्मण की गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। मरते समय जिनके नाम के उच्चारण मात्र से अधम को भी सदगति प्राप्त हो जाती है, उन्हीं प्रभु के दर्शन और हाथों का स्पर्श प्राप्त कर जटायु का जीवन धन्य हो गया। महाप्रयाण के लिए तत्पर गिद्धराज से श्रीराम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, आपको मैं क्या दे सकता हूं, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं। आप परमधाम जाइए, किंतु वहां पिताजी से सीता हरण का दुखद समाचार न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे कुटुंब सहित स्वयं जाकर उन्हें सारी कथा सुना देगा।

श्रोता अभी आपने श्री रामचरित मानस का पाठ सुना मानस गान कार्यक्रम में। आज आप सुन रहे थे भाग 258 का पाठ। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सीता और गीता फिल्म का ये मधुर गीत सुना, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आज का समय भागदौड़, तनाव, मोबाइल और मशीनों का समय बन गया है। देर रात तक जागना, घंटों स्क्रीन पर रहना, अनियमित खान पान और शारीरिक श्रम की कमी ने हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे प्रभावित किया है। कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, अनिद्रा और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। और ऐसे समय में यदि कोई सरल, सस्ता और प्रभावशाली औषधि है तो वह है प्रातःकाल का भ्रमण। सुबह की ताजी हवा में चलना केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी एक नई ऊर्जा देता है। जब हम खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच चलते हैं तब शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, हृदय मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहने लगता है। पक्षियों की चहचहाट, मंद मंद बहती हवा और उगते सूर्य का दृश्य मनुष्य के भीतर एक सकारात्मकता भर देता है। श्रोताओं, आयुर्वेद में भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थमायुष, अर्थात जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर दिनचर्या का पालन करता है वह अपने स्वास्थ्य और आयु की रक्षा करता है। और डॉक्टर भी आज ही मानते हैं कि प्रतिदिन केवल 30 से 40 मिनट की तेज चाल से की गई सैर कई बीमारियों से बचाव कर सकती है। सुबह की सैर करने से शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहते हैं, मानसिक तनाव भी कम होता है और सुबह टहलने वाले लोग अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और खुश रहते हैं, प्रसन्नचित पाए जाते हैं। श्रोतो, आज की सबसे बड़ी समस्या केवल शारीरिक बीमारी नहीं है बल्कि मानसिक थकान भी है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तनाव और चिंता में जी रहे हैं। ऐसे में प्रातःकाल का भ्रमण एक कुदरती उपाय है, प्राकृतिक उपचार की तरह कार्य करता है। यह हमारे मन को शांत करता है, विचारों को पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है और जीवन के प्रति एक नई उम्मीद, नई आशा जगाता है। और यदि संभव हो तो सुबह की सैर के दौरान मोबाइल से आप दूरी बना के रखें, कुछ पल स्वयं से बात करें, प्रकृति को महसूस करें, गहरी सांस लीजिए और यकीन मानिए कि ये छोटी सी आदत आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और इसी भावना को एक पुराना गीत भी कितनी खूबसूरती से व्यक्त करता है, सुहाना सफर और ये

शुदो, अभी आपने मधुमती फिल्म का नगमा सुना मुकेश की आवाज़ में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और सलील चौधरी ने संगीतबद्ध किया। शुदो, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है, तनाव में जी रहा है। ऐसे में सुबह की सैर मन को शांत करती है और ये हमें कुछ पल अपने साथ बिताने का सुअवसर भी देती है। जब हम पार्क में हरियाली के बीच चलते हैं, पेड़ों को देखते हैं, खुली हवा में गहरी सांस लेते हैं, तो मन का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें फिर से जीना सिखा रही हो। और सच पूछिए तो कुदरत से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। हरी घास पर चमकती ओस की बूंदें,

मंदिरों की घंटियां, पक्षियों का मधुर संगीत और उगते सूर्य का दृश्य, ये सब मिलकर मन में आशा और सकारात्मकता भर देते हैं। ओशोदेव हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनाता है। और आज विज्ञान भी यही बात स्वीकार करता है। सुबह जब हम घूमने जाएं तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मोबाइल फ़ोन से आप थोड़ी दूरी बना के रखें। आज लोग पार्क में भी चलते कम हैं और मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कुछ समय कुदरत को महसूस करें, अपने मन की आवाज़ सुनें, और कभी कभी मौन भी बहुत कुछ सिखा देता है। और यदि संभव हो तो सैर के साथ कुछ हल्का व्यायाम और योगासन भी शामिल करें। कुछ मिनट प्राणायाम करने से शरीर और मन दोनों को अद्भुत लाभ मिलता है। श्रोतव, जीवन में बड़ी खुशियां हमेशा बड़े साधनों से नहीं मिलती हैं। कभी कभी सुबह की ठंडी हवा, खुला आसमान और अपने लिए निकाले गए कुछ शांत पल ही सबसे बड़ी दौलत बन जाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक और मधुर गीत के साथ।

शोधा भी आपनी मैं हूं ना फिल्म का नगमा सुना, स्वर के और वसुंधरा दास के थे। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का था। शोधा, आज इंसान बड़ी खुशियों की तलाश में इतना दूर निकल आया है कि उसे अपने आसपास बिखरी छोटी छोटी मुस्कुराहटें दिखाई ही नहीं देती हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि जब बड़ा मकान होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा नाम होगा, तब खुश होंगे। लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी की असली मिठास उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, माँ के हाथ की चाय, बच्चे की मासूम मुस्कान और पुरानी दोस्त का अचानक मिल जाना, बरसात की पहली बूंद, ये सब छोटी बातें हैं मगर दिल को सुकून देने वाली बड़ी खुशियां हैं। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जिंदगी बड़ी नहीं होती जनाब, जीने वाले हर लम्हे को बड़ा बना देते हैं। शुद्ध आज का इंसान तनाव में है, बेचैनी में है, और डॉक्टर कहते हैं कि मानसिक शांति के लिए दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना, मुस्कुराना और अपने भीतर उम्मीद को जिंदा रखना। लेकिन सवाल ये है कि खुशी मिले कहाँ? खुशी बाज़ार में तो बिकती नहीं है, ये तो हमारे नज़रिए में बसती है। यदि हम हर दिन एक छोटी सी अच्छी बात ढूंढ लें तो ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। सुबह उठकर सूरज को निहारना भी खुशी है, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना भी खुशी है, अपने बुज़ुर्गों के साथ दो पल बैठ जाना भी खुशी है, और किसी रूठे हुए अपने को मना लेना, यह तो सबसे बड़ी खुशी है। श्रोताओं, हमने रिश्तों को बहुत जटिल बना लिया है। पहले लोग कम साधनों में भी ज़्यादा खुश थे क्योंकि दिलों में अपनापन था। आज साधन तो बढ़ गए हैं लेकिन सुकून कम हो गया है। खुश रहने के लिए बहुत कुछ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो है उसमें खुश होना ज़रूरी है।

प्रकृति हमें हर रोज यही संदेश देती है। फूल कभी ये शिकायत नहीं करता कि उसकी उम्र कम है, वह तो खिलकर अपनी खुशबू बांट देता है। और नदी यह नहीं सोचती है कि रास्ते में कितनी चट्टानें हैं, वह तो बस बहती रहती है। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखना होगा। कभी बच्चों के साथ हंस लीजिए, कभी पुराने गीत सुन लीजिए, और कभी बिना वजह किसी अपने का हालचाल पूछ लीजिए। देखिए जिंदगी कितनी हल्की और सुंदर लगने लगेगी। और सच मानिए, जब इंसान छोटी छोटी खुशियों का सम्मान करना सीख जाता है, तब बड़ी खुशियां खुद उसके रास्ते में, उसके दरवाजे तक चली आती हैं। और लीजिए सुनिए एक गीत, चितचोर फिल्म का, हेमलता और यशुदास की आवाजों में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: श्रोताओ, जीवन का संगीत केवल बड़े सपनों से नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी मुस्कानों और अपनों के साथ बिताए पलों से सजता है। इसी भावना के साथ सुप्रभात कार्यक्रम से संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार। अभी आप सुप्रभात सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
4: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए

0: की सहायता भी करे।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों

0: पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए

0: हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है। और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
2: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
4: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this

0: master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in Chamba have captured the first ever video evidence of brown bear in Siabehi Wildlife Sanctuary, reports the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says Centre's High-Level Committee on Artificial Demographic Changes to also assess requirements of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doobhal calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all important Qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी ज़रूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो ओपी टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से

0: त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्रिशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्रिशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की नई तारीखें और एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। NTA ने बताया कि इतवार के रोज़ होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। IMD के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनज़र कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज़ पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मानसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज़ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नज़र राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजर आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियाँ इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाए अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने DK शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने LAC और सरहद से मुतालिक तनाज़े पर तामीरी बातचीत की।

0: इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमायां खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज़ की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी ज़रूरत का भी जायज़ा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं।

श्रोताओ, सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आपने कुछ भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी।

0: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांवों तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झाबर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
1: कि एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अब यह तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो वो ईवी वाहन ही खरीदेंगे, ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गज़लों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गज़ल को आम आदमी तक पहुँचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
2: धूप के पार सितारों का नगर लगता है, उस पहाड़ी पे मुझे चांद का घर लगता है। चांद महराब पे सोई हुई ये कहत है, बेवजू आंखें हैं, पड़ते हुए डर लगता है।
0: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफ़ी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को

0: बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफ़ी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में लीजिए आज सुनिए बैरागनाथ की गाई लोक रचनाएं।

0: श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज कलाकार हैं बैरागनाथ। इनकी गाई लोक रचनाएं आप सुन रहे हैं, लेकिन पहले सुनिए ये संदेश।
1: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144 67186।

श्रोताओं, मरुमंगल कार्यक्रम में अभी आप बैरागनाथ की गायी लोक रचनाएं सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ युगल हिंदी फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम में पहले सुने पारसमणि फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शब्द रचना असद भोपाली की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

लीजिए, श्रोता हूँ, आप सुनिए। ताजमहल फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को शब्द रचना साहिर की है और संगीत रोशन का।

लीजी शो तो आप सुनिए। आराधना फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में, इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने। शब्द नीरज के हैं, संगीत SD बर्मन का।

शो, तो अभी आपने तेरी मेरी सपनी फिल्म का नगमा सुना, और लीजिए अब सुनिए वक्त फिल्म का यह नगमा। इसे गाया है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने, शब्द रचना साहिर की है, संगीत रवि का है।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए गीत फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की युगल आवाजों में। इसे लिखा है हसरत ने और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आपने कुछ युगल हिंदी फिल्मी गीत सुने। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गा मेरे मन गा।

श्रोताओं, अभी आपने गाइड फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी को सुना। गीत शैलेंद्र ने लिखा था और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। लीजिए सुनिए चांदनी फिल्म के लिए लता मंगेशकर और बाबला मेहता को।

0: अपना कार्ड दे, पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: लीजिए श्रोताओ, आप सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है यादों की बारात। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

लीजिए तो सुनिए, किशोर कुमार की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

श्रोताओं, कार्यक्रम गा मेरे मन गा इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। इसे गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत जतिन ललित का है।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए परदेश फिल्म के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के शब्द हैं और नदीम श्रवण का संगीत है।

श्रोताओं, अभी आपने परदेस फिल्म के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक को सुना। लीजिए, कार्यक्रम में अब सुनिए मोहब्बतें फिल्म के लिए लता मंगेशकर और उदित नारायण को। आनंद बख्शी के शब्द हैं और जतिन ललित का संगीत है।

अली जी श्रोताओ, कार्यक्रम में अब सुनिए श्रेया घोषाल को। फिल्म का नाम है जब वी मेट। शब्द इरशाद के हैं और संगीत प्रीतम ने दिया है।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए जीत फिल्म का यह नगमा, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वर में। शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का है।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे गा मेरे मन गा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन की 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन की भागती हुई राहों में कुछ पल ऐसे होने चाहिए जहाँ शब्दों से अधिक संगीत बोले, जहाँ भावनाएं धुनों में ढल जाए और जहाँ यादें गीत बनकर दिल के आंगन में उतर जाए। और आज की इस गीतमाला में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जो दिल की खामोशियों को आवाज़ देते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस गीत से।

श्रोताओं, अभी आपने मोहम्मद अजीज को सुना। फिल्म का नाम था नगीना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की थी छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना हर्षित खुशी गोस्वामी, छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, फाजिल्का पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश बागड़िया, रजत और बेबी गरिमा बागड़िया। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, खोखरा वाली गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, ये फरमाइश हमें भेजी है झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, माफ कीजिए बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया, पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परविंदर, सचनूर और मनविंदर, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, वड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। इसी गीत की फरमाइश आई है हमें गांव रामपुरा से सुरेंद्र डीडर, सकीला डीडर, संदीप अनवर, अक्कू बावरा, फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन डिनवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम, किरोड़ीवाल। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हीना। आवाज लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत की फरमाइश की है सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, वंदना गोहर, मयंक गोहर, तन्वी गोहर, जयपाल यादव, पटेल नगर मलोर से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आजू जाजोरिया, गुड्डू, दत्रेगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, श्री गंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका और मनी सहारन। इसी गीत की फरमाइश की है

हनुमानगढ़ से विक्रम करवासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव करवासरा, कुंदन जाखर, लीलाधर स्वामी, किरसन मायल, किडूराम जोया, हनुमान सहारन और सुनील पाइवार शर्मा, छत्रपति संभाजीनगर महाराज से अनिल कुमार गोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता गोड़के, वैष्णवी गोड़के, गायत्री गोड़के, यज्ञेश गोड़के, हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जोशीन खान। इस गीत की फरमाइश की हमें चक 15 पीएस से सरजीत सिंह जोसन, सरजीत कौर जोसन गुरमन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन, वेकनूर कनाडा से रोबिन सिंह जोसन, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल, गांव घमंडिया से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया, ईवा धारनिया, किकरवाली झोड़ी से अशोक मांझू, सिद्धार्थ मांझू। इसी गीत की फरमाइश की है लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल को सुना। फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी थी साधु शहर से रामकुमार रिवार, चंद्रकला रिवार, गांव बड़वाला हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा लक्षिता याशिका, माँ विद्या देवी सारा मायल परिवार, गांव फरासी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री, फेकाना नोहर से जय सिंह धामू, धर्मेंद्र सुथार, मदन सुथार। इसी गीत की फरमाइश की थी तेलंगाना से शेख अल्हा बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आशिफ शेख, लखवाली हेड से कृष्णा सौरभ विशाल, राजबाला ममता लक्षिता नव्या, मोहम्मद रफीक, संगरिया से मुकना राम महावीर लोहरा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष जोगी और बब्बू डब्बू। इसी गीत को सुनना चाहा था बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। उत्तराखंड से निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, अक्ष क्यू, महावीर लोहरा। इसी गीत के लिए ही फरमाइश भेजी थी हमें चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमना अनेजा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आसाम से हितेंद्र दास। इसी गीत को सुना चाहा था दादी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है होटल आवाज, मनहर और आशा भोसले की है। इस गीत को सुनना चाहा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, अलीका माफ कीजिए सदर बाजार कुरावाली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, रामपुरा मटोरिया से मुरारी लाल, अमन, रमन, तनीश, सीताराम, मदन लाल शर्मा, पंकज, हर्ष, मनीष, राजेश कुमार शर्मा, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिघान खुराना, हिसार से सज्जन कुमार जागड़ा, कार्तिक व वेदांश, फाजिलका पंजाब से

भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, देवांशी खेड़ा, वाड़ी खेड़ा, आरबी खेड़ा। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से बलकण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा। गंज डुडुवारा से शमशूल कमर राही, साहिल फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मिस्टर बोंड। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की हैं। इस गीत की फरमाइश की है लखवाली हेड से मास्टर भंवरलाल कृष्णा, सौरव विशाल, राजवाला, ममता लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, संग्रिया से मुकना राम, महावीर लोहरा। इसी गीत की फरमाइश की है हयात कॉलोनी बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। गंज डूडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तोसीम हाजमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। इसी गीत को पसंद किया है खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, ईशान सैनी, कार्तिक सैनी। छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन। जालंधर से संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भरत मकर, कमल साहनी। अलीगढ़ डब्बवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी। डब्बवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी। भावसर से वीरम ग्राम, गुजरात से अजीत भावसर, पमीला भावसर, भावे सनी भावसर। पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। इसी गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर। गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल। साथ ही इसी गीत के लिए हमें कुछ पत्र मिले हैं। गंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित, हेमंत। हरियाणा से जेके बोकोलिया, श्रीमती सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू बोकोलिया। मलोट के पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत। बाप

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है दो दिलों की दास्तां। आवाज़ें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की है। इस गीत की फरमाइश की है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। सिद्धार्थ नगर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। इसी गीत की फरमाइश की है छक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज, विक गोरा, जगसीर। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो। इसी गीत की फरमाइश भेजी है हमें भोपालगढ़।

राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। डोंडरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मंडी केसे सिंहपुर से विश्वजीत, बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष सूद। बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदनलाल वर्मा। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुला, सबाहत, कीरत हुजरे, रेहान शेख। इसी गीत के लिए फरमाइश भेजिए हमें। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। केसे सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महिंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा। मंसूर नगर शाहबाद पियानी हरोई से अलोक कुमार खरे। गंजनूवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिद शेख, दानी शेख, अमन आफरीदी। ढाड़ी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां। महाराष्ट्र से अभिजीत गावड़कर राही, श्रीमती सरिता गावड़कर, प्रणीता सिद्धांत गावड़कर, लाडला टुक टुक गावड़कर। नागपुर से शैलेश गावड़कर, वैशाली गावड़कर, एकांत, सुमित गावड़कर, ध्वनि गावड़कर। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम है सूर्या। गीत के बोल संतोष आनंद के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी है हमें गंज डूडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशूल कमर राही। मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, आशा गुगलानी। जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से एस दशरथ सेन और रानू सेन। मधुबनी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा। संग्रिया से श्याम मिड्डा, सुमन मिड्डा। इसी गीत की फरमाइश की है गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर से राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मनु, शिव सेठी करणपुरी, स्माइल टुटेजा, पवन गुजर। उत्तराखंड से जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। बहलोन नगर से हरीश हैरी, जगतारा जहरी, सुशील डेलू, राकेश चाहर। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है कुदरत का कानून। आवाजें लता मंगेशकर, शबीर कुमार की हैं। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है गजडोवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है हमें। रंगमहल से सुखदेव नाथ, अमित कुमार। दो के एसआर से इंद्र मोहन। इसी गीत की फरमाइश की है हमें कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव।

इसी के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीतमाला यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। इसमें जानकारी का विषय होगा मूंग की उन्नत खेती कैसे करें।

बहनें अपना कार्यक्रम घर आंगन सुनेंगी 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगी गुणों की खान नीम, नारी परिवार की धुरी, अरंडी के तेल के फायदे, दहेज लेना व देना कानूनी अपराध और काम की बातें।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारी शाम की सभा में 5:00। इसमें आज आप सुनेंगे जीवन में शिक्षा का महत्व, उस्ताद योजना, गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल, युवा देश का भविष्य और आज का इतिहास।

सराइकी का समय रहेगा 6:05 पर। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे 6:40 पर। चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे 7 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे गीता रो गजरो, बाजार भाव और मौसम की जानकारी।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:45 पर। फिल्म संगीत एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत का समय रहेगा 9:15 पर।

मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। संयोजक नवीन सिसोदिया और प्रस्तोता होंगे दुर्गा राम। फिल्म संगीत आप रात्रि 10:30 पर सुनेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस गीत से।

दिल हाय मेरा दिल तेरा दिल दिल से दिल मिल गया।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था पराया धन। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था पराया धन। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत आर डी बर्मन का।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, फिल्म का नाम था अगर तुम ना होते। गीत के बोल गुलशन बावला के थे और संगीत आरडी बर्मन का। इसी के साथ ही सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गजल गायक चंदन दास की गाई कुछ गजलें।

श्रोताओं, सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं गजल गायक चंदन दास की गाई कुछ गजलें, और लीजिए अब उनकी एक और गजल सुनिए।

0: श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलियान।
1: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, बात करें आप खेती पाती की, और खेती पाती में देखा नहीं तो अब ई मौका अपने जायदगी की फसलों का माँ अपने जो किसान भाई लोग है भी मूंग की बिजाई कर सके, क्योंकि मूंग की फसल है भाई एक दलहनी फसल है, और बिया भी अपने जो किसान भाई लोग भी चीज़ ने जाने हैं और अपना विशेषज्ञ बतावे कि दलहनी फसलों के जिकी बिजांत है बा क्या का अपनी जिकी माटी की जिकी उर्वरा शक्ति है, बिना बढ़ाना भी काम करे है, बिना पानी धारण करने की जिकी क्षमता है, बिना भी बढ़ाना को काम करे है। तो यह मानस कहाँ का जितनी भी दलहनी फसलां है बंगी अगर आप बिजांत करानी तो बा अपनी धरती के लिए भी फायदा सौदो है और अपने मुनाफे के लिए भी बहुत बढ़िया मानी जाए। और दलहनी फसलां जिकी है भी अपने हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र के माँ काफ़ी रकबा गमा करे और बिरानी क्षेत्र में भी करे और पानी वालों जो को सिंचित क्षेत्र है बट्ठे भी अपना जो किसान भाई लोग है भी मूंग की फसल

है या फिर दलहनी जी की फसलें हैं बिक रहे हैं। तो आज अपन बात कर सकते हैं जी मूंग की फसल के बारे में, क्योंकि मूंग जो को है वो एक दलहनी फसल का माँ आवे और इनमें प्रोटीन की जी की मात्रा है बा बहुत ज़्यादा मानी जाए, और आप कम कम जी की अवधि की माना तो 60-70 दिन में पक्के तैयार हो जाए, और कम पानी का माँ पाएंगे जो उत्पादन है वो बढ़िया अच्छो और बेहतरीन तरीके से अपा ले सका। आगे बात करें जी माँ प्रोटीन तो हो ही हुए और आप पौष्टिक दाल के रूप में भी आप आएंगे इस्तेमाल अपने रसोई गमा खाने गमा पकड़ा और कम समय में भी तैयार हो जाए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति अब भी बढ़ावे और कम पानी में ज़्यादा उत्पादन जो है वो भी अपने जो किसान भाई लोग जगह है भी ले सके, और बिरानी क्षेत्र और सिंची क्षेत्र दोनों आपने रकबा है दोनों क्षेत्र जगह है वहाँ आप मूंगी जी की भी जानते हैं वह कर सका। बात करें जी जलवायु की और माटी की, तो 20-35 डिग्री को तापमान जट रहे बठा पाँ मूंगी जी की भी जानते हैं पापा बढ़िया तरीका से कर सका, और कम वर्षा वाले क्षेत्र है जटा बरसात जी की हवा 30-50 सेंटीमीटर तक आस पास हुए तो बठे भी मूंगी जी की भी जानते हैं बा बढ़िया तरीका से आप कर सका। इनके अलावा भाई लोगों हल्की चूँ मध्यम दोमट माटी जी की है बा मूंगी फसल के लिए बढ़िया मानी जाए, आ आपने जानी जान जगह भाई लोग अब बात बतावे, और मिट्टी को जो पीएच मान है वो 6.5-7.5 आसा पास हुए तो बठे मूंगी जी की फसल है बढ़िया मानी जाए। तो अपने सहसु पहली तो जरूरी बात तो आई है कि अगर आप मूंगी भी जांच करनी है या फिर दलहनी फसल में कोई भी फसल की भी जांच करानी तो सहसु पहली तो आप पानी की जी की जांच अबा भी करानी जरूरी है, और इंग सागा सागा अपन के करना है कि मिट्टी को जो पीएच मान है वो भी थोड़ा सा जाँच पर कर लेना चाहिए, जाँच करवागे और भी बाद में आप किस्मा का हिसाब से या फिर अपनी फसल के हिसाब से आप बीमा जी की बीजांत है बापा कर सका। अब बात करें जी खेत तैयारी के बारे में, क्योंकि कोई भी फसल की बीजांत करान तो बिंगमा सहसु पहली जरूरी है कब भूमि को सुधार करनो बिन खेत की जी तैयारी है बा करनी, क्योंकि बढ़िया तरीके से अगर आप खेती की तैयारी करांगा तो बिंगमा कोई भी फसल की बीजांत करा चाहे आप दलहनी फसल की बीजांत करा या फिर खाद्यान्न की जो दूसरी फसलें हैं बांगी बीजांत करा या फिर कोई नकदी फसलें हैं सब्जियों की जो फसलें हैं बांगी बीजांत करा तो ज़्यादा फायदे हुए। तो भूमि की जो तैयारी है बा आपने सहसु पहली करनी जरूरी है, और इंगे लिए आपने 2-3 एक बार खेत की जो जुताई है बा बढ़िया तरीके से कल्टिवेटर से तो इस आप करनी चाहिए और माटी ने भुरभुरी बना देवा ताकि आपनी जी माटी है बा बढ़िया बन जाए। पहली पोत आपने हड़की से एक रूणी निकाल देवा भी बाद गवा के करना है कि बिंग बढ़िया तरीके से हल से तो इस जुताई कर देवा और बाद में स्वागो पाटो लगा के अर बिन एक एक सार कर लेवा और समतल कर लेवा आप, और इशू की है कि एक तो बाद गवा जब आप पानी धानी लगावानी तो समतलीकरण अगर करेड़ो है एक सार करेड़ो है कोई स्वागो पाटो लगाएड़ो है तो पानी भी ज़्यादा खपत कोनी हुए नहीं और पानी पूरा पूरा अपनी जी की फसल है बिने लाग सके। अब बीज और बुआई की बात करा तो उन्नत जी की किस्म है बंगमा जहाँ सम्राट पंत मूंग जी की 4 है, पंत मूंग 5 है, मूंग 351 है, ये बढ़िया किस्म है। तो आम कोई भी एक किस्म लेगी अपना जो किसान भाई लोग है बीजांत कर सके, लेकिन जट्ठे से अपना बीज खरीदा नहीं बठे के है कि जक्का प्रतिष्ठान से जक्की दुकान से आप बीज खरीद के ले आओ तो वो बीज जो है वो अच्छी गुणवत्ता होना चाहिए, और बीज की जी पर्ची है आप जो बिल जो है वो अपने जरूर लेना चाहिए, और जका भाई लोग घरे बीज राख रखे है तो बने भी आई बात कैसे कि बीज ने अच्छी तरह छांट गए और बिन साफ सुथरों बना गए फिर ही आप खेत में बीजांत करा, और बीज का माँ अगर टूटड़ा फुटड़ा दाना है कोई काना दाना है या फिर बाग में कोई कचरो है या फिर कोई कंकड़ है तो बिन आप अलग कर देवा बढ़िया छंटाई कर गए बिना छाण गए फिर बीज में काम में लेनो जरूरी है। अब बीज दर की बात करा तो बीज जो है वो मूंग की फसल के लिए 12-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि 4 बीघा दीट जो को बीज है वो 12-15 किलो अपने लेना है, और अपा लाइन में कतारा गवा पाएंगी जी की बीजांत है बा करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की जी की दूरी है बा 30 सेंटीमीटर रखनी है और पौधा से पौधे की जी की दूरी है बा 10 सेंटीमीटर का आसा पास अपने रखनी चाहिए। अब गहराई की बात करें तो मशीन की जी की गहराई है पोर जो है भी लगभग 3-4 सेंटीमीटर तक जमीन गवा चालना चाहिए ताकि बीज जो है वो माटी गवा बढ़िया तरीके से दब जाए। इनके अलावा भाई लोगों उर्वरक प्रबंधन जो है वे भी अपन करना जरूरी है, तो खेत की तैयारी के टाइम में अपन के करना है कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10-15 टन गोबर की जो अच्छी सड़ी गली खाद है या फिर आपने जो किसान भाई लोग है भी अगर घरे तैयार कर रखी है कंपोस्ट खाद है या फिर कोई दूसरी जैविक खाद तैयार कर रखी है तब भी आप खाद भी ले जाके खेत में नाक सका, अगर आपने अकूलडी बनाई दी है ढेरी बनाई दी है तो बढ़िया सड़ी गड़ी जो कि गोबर की खाद है जका कोई खरपतवार का घास का जगह बीज ना है तो वह खाद जी है 10-15 टन अपने खेत गाँव ले जाके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बिन बुरका देनी चाहिए ताकि माटी की जो उर्वरा शक्ति है वह बढ़िया और बेहतर बन जाए। अब रासायनिक उर्वरकों की बात करा तो इंग

0: अपन के करनो है कि 20:40:20 के हिसाब से जो को एनपीके है वो प्रति हेक्टर के हिसाब से अपन रखना है और माटी का परीक्षण के आधार पर ही अपन है इनको जो को प्रयोग है वो करनो चाहिए। और इनके अलावा सैसु श्याणी और जरूरी बात आ भी है कि अपन कोई भी फसल की बीजांत करा और अब ये मौके सर अपन मूंगी बीजांत करनी है तो बीज उपचार जो कोई है वो अपन जरूर करना चाहिए। बीज उपचार करने का कई फायदा है कि कई बार आप देखे कराने का कोई आप बीज इशू नाक देवा और कई बार आप देखा बीज जो कोई है वो इशू आ जाए अपना थैली कमा आ जाए या फिर अपने कोई मशीन का मापा इशू नाक देवा जो कई वजह से क्या कि उगान कम लेवे फुटान कम लेवे और कई बार इं भी हो जाए कि बीज जो कोई है वो एक बार उगान तो ले जाए उगा भी बढ़िया तरीका से हो जाए लेकिन जिया जिया वो बढ़ोतरी खान तो बीज सुखिया के बाद में फिर बीमा जड़ में कई तरह का जैसा रोग लाग जाए भूमि जनी जगह रोग है भी लाग जाए तो इनके लिए अपन ने बीज जो है वो राइजोबियम कल्चर से भी बढ़िया तरीके से उपचारित कर लेवा भूमि जी हवा उपचारित कर लेवा तो बीज यूँ माटी में अगर कोई विषाणु है कीटाणु है तो भी खत्म हो जाएगा। और अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा तेज पड़ ला रही है तो अपना जगह भाई लोग है बे बिया तो आ बात जकी है थाने पहला बतानी चाहिए और अपना जगह भाई लोग है वो काम पहला करना चाहिए क्या जमीन की जुताई है वह 5-7 दिन पहला बढ़िया गहरी कर देनी चाहिए ताकि भी वहाँ कोई खरपतवार का बीज है या फिर कोई कीटाणु विषाणु जगह है या फिर कोई ऐसा सुंडियाँ जकी है लटा जकी है बंगा अंडा है भी इतनी गर्मी पड़ ला रही है कि बिंग वजह से भी खत्म हो सके तो बाद में फिर खड़ी फसल का भी अपने कीड़ा कांटा जगह है रोग व्याधियाँ जकी है भी कम लगेगी और अपने जो फालतू को खर्चों के बार आप रासायनिक उपचार करा तो वो भी आपको कम लगेगा पीसो जो है वो भी अपनों बढ़िया बच्चे को। अब बात करें जी सिंचाई प्रबंधन की तो सिंचाई प्रबंधन के लिए बिया तो अपने जो मूंगी फसल है बिना ज्यादा पानी की जरूरत कौन पड़ेगी आप बिरयानी क्षेत्र का वहां तो 1-2 पानी से भी हो जाए अगर इन्हों थोड़ा छंटा छिड़क हो जाए बरसात हो जाए तो पानी धानी ज्यादा देने की जरूरत भी कौन पड़ेगी। फिर भी अगर ये लगा है कि मौसम अगर ज्यादा गर्म चलन ला रही है लू लपट जकी चलन ला रही है तो माटी जकी है बात जल्दी बत्तर आने की संभावना रहे तो पानी धानी भी देना जरूरी है तो इनके लिए आपने के करना का फूल आने से पहला और फली बनने गटेम अपन किया थोड़ा बहुत पानी जो को है वो देना जरूरी है 1-2 पानी जगह भी हल्का फुल्का अपने देना है ज्यादा भरा वालों जो को काम है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि मूंगी एक ऐसी फसल है जकी की जड़ा जकी है ज्यादा गहरी को नहीं होनी थोड़ा सा पानी अगर मूंगी फसल में खड़ जाए तो मूंग जगह भी खत्म होना शुरू हो जाए बढ़ना शुरू हो जाए तो इन वास्ते पानी जो को है वो तय मात्रा के हिसाब से हड़को फुड़को पलेओ जी आप करे करानी हड़को फुड़को रूणी निकाले करा बितोक ही अपने रखना है और मौसम के हिसाब से अपने देखना है कि अगर ये लगा कि बादलवाई हो रही है और पानी की जरूरत कितनी का अपनी फसल ने तो भी हिसाब से आप पानी देना जरूरी है। इनके सागे सागे अगर अपनी फसल जब थोड़ी सी बढ़वार लीजिए और भी बाद में जगह बिन बुलाए मेहमान है खरपतवार जगह है बे भी आवई है आप आते भी जानो कि कोई भी फसल है भी वहाँ घास फूस जो है वो लगन शुरू हो जाए तो बुआई का 20-25 दिन एक बाद का वहाँ निराई गुड़ाई जी की है बाड़की फुड़की कसी ऐसी या फिर कोई भी यंत्र से आप कर सकें ताकि कचरों इतना ज़्यादा फैले ना का अपनी जी फसल है वह दब जाए और भी बाद में फिर आपने किया कि नुकसान भी होना शुरू हो जाए। अब अपनी इन मूँगी फसल का माँ कई जी किस्मा थाना बता रहे हो सम्राट जी की किस्म है वह अपने राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया मानी जाए पंत मूंग 4 जकी है वह जल्दी पकन वाली फसल है तो बहुत बढ़िया फसल आप मान सकें और इनके अलावा मूंग 351 आ रोग प्रतिरोधी किस्म भी मान सकें तो आप भी आप ले गए और अपना जगह विशेषज्ञ बतावा कि बीजांत अपन करनी चाहिए और इन में जगह रोग जहाँ पीला मोजिक है पाउडरी फपूदी जड़न गल जो का रोग है तो भी लागने की ज़्यादा संभावना रहे तो इनके लिए अपने रोग प्रतिरोधी जी की किस्म है वह चुनाव करना चाहिए और टेम पर बिजाई कर देवें बुआई कर देवें तो ये ऐसा जगह कीड़ा कांटा भी कम लग सा तो हम बताऊँ पूरा ध्यान रखना है अपना खेत का नहीं चलूँ राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में तेज अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच इस बदलाव से तापमान में गिरावट और लू का असर कम होने की संभावना है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जून तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। इस बीच श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ झुंझुनू और चूरू तथा आसपास के इलाकों में कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं कोटा पिलानी जैसलमेर अलवर फलोदी बीकानेर में गर्म हवाएं चली और हीट वेव का असर बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से

0: सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने परिंदों और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
1: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूँ। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भामाशाह दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गांव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं, राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए।
0: प्रदेश में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि 24 मार्च से राज्य के 11,000 से ज्यादा अधिक जोखिम वाले गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 16.5 लाख से अधिक एक्सरे और करीब 2.25 लाख से ज्यादा NAT की जाँच की गई है। उन्होंने बताया कि सक्रिय केस गतिविधियों में कुल 32,000 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। वहीं इस साल जनवरी से अब तक 38,000 रोगियों को पोषण किट वितरित किए गए हैं, साथ ही 2,000 नए निक्षय मित्र भी जोड़े गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में आज भी जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में भरतपुर में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को पारंपरिक जल स्रोतों को साफ रखने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर वृक्ष पूजन कर कलश यात्रा भी निकाली गई। उधर बालोतरा में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। इसके तहत पुराने तालाबों, जोहड़ और बावड़ियों की साफ सफाई और मरम्मत की जा रही है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चौधरी चरण सिंह हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेल मंडल के दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से रेलवे के 2 इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उदयपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। पाली जिले में देर रात ट्रेलर की टक्कर से RTO विभाग में कार्यरत गार्ड की मृत्यु हो गई। दुर्घटना जॉर्डन टोल प्लाजा के पास हुई, जहां वे RTO टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भी आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से योगासन कार्यक्रम रखा गया। इसके जरिए लोगों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

भजन सुनर तो सचमुच हिवड़े रे मायने इसी ठंडक पड़ी है सा, जाने कड़कड़ाती दोपहरी रे मायने माटी रो घड़ो घड़े रो ठंडो पानी कलेजे ने तर कर दियो हुआ है। थाने भी आनंद आयो होनी बहनों, आनो ही चाहिए सा। भजन और सुमिरन माए आई तो बात है, मन री सगली आंधिया एकाएक थम जावे। अरे बहनों, पानी सु मन ने याद आयो, जेठ रिया ताती दोपहरी मायने पानी रो घड़ो कितो प्यार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।

0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: वासा वाह, कितो पूठरो गीत सुन्यो हो। गीत सुनर तो हिवड़ो हरियो हो गयो सा, है नी बहनों? जद आ संगीत री सुरीली तान कान रे मायने पड़े नी, तो दोपहर री सगली थकान मिनट मायने छू मंतर हो जावे। अरे हाँ, थकावट सु याद आयो, अभी मैं रसोई मायने जद काम समेटने री बात कर रही ही नी, तो मन मारी दादी सारी एक बात याद आ गई सा। दादी सा कया करता कि बिनणी घर री

थकावट सो याद आयो, अभी मैं रसोई मायने जद काम समेटने बात कर रही नी तो मन हमारी दादी सारी एक बात याद आ गई सा। दादी सा कया करता कि बिनने घर री रसोई और घर रो आंगन उन मिनख जू होनो चाहिए जाए जिको खुद तावड़े रे मायने तप जावे पन दूजा ने छाया देवे। साची बात है सा, अपा नारी भी परिवार रे मोह रे आगे परिवार रे प्रेम रे मायने कदी थका कोनी। आ ताती लू चाले सूरज भगवान जी तपन लाग रिया है पन मारी लाडली बहना रा हाथ कदी कोनी रुके। सुबह उठन सु ले रात ने सगलो काम निवेड़न ताई थे सगली घर री गाड़ी ने इसे हेत सु खींचो कि घर रो एक एक कोनो मुस्कावन लाग जावे है। बहनों कई बार घर मायने जिम्मेदारी बढ़ जावे है, कदी घर रो बजट भी डगमगा जावे, कदी कोई बात खातर टाबर नहीं सुने तो कदी सास ससुरी तबीयत भी ढीली पड़ जावे। उन बखत जद घर रो हर मिनक उतावलो होन लाग गए खिंचन लाग गए बी टाइम मारी लाडली बहना थे सगली कितनो धीरज राखो सा। जो तपती धरती रे माथे कोई हरियो भरियो रूख री छाया बन जावे नी, बिया ही थे सगली पूरे परिवार माए ठंडी छाया बन जाओ। सच्ची पूछो तो बहनों नारी परिवार री धुरी है। आ बात कोई इया ही कोनी कही, ज्यो गाडे रो पैडो मतलब पहियो एक किली माथे घूमे उन किली ने धुरी कहवा हाँ, उन किली माथे ही गाडो आगे चाले है। बिया ही नारी ही है जिके पूरी परिवार ने एक तांत मायने एक धागे रे मायने पिरोर रखे है। भाई भाई रो प्रेम होवे चाहे सास बहू रो, सासू जवाई रो आदर सत्कार होवे, वो सगलो ने है नारी रे हाथ रे मायने ही होवे सा। नारी ही घर ने स्वर्ग बनावे, घर परिवार मायने छुटुटी बातें होनती ही रहवे है। कदी उतावलो नहीं होनो, कदी आपने दिल ने छोटो नहीं करनो, हिवड़े ने मोटो राखनो। मने एक बताओ बात बताओ सा, आकाशवाणी रे कार्यक्रम सुनने वाली मारी कोई भी बहन कदी कमजोर थोड़ी ना पड़ी है, कदी को नहीं। थारे भीतर धरती माता जी धीरज है जिकी खुद भूखी सो जावेली पन घर रो कोई टाबर या मेहमान भूको नहीं सोवे। आ तासीर है मारे मारवाड़ री नारियारी। जदी तो कहवे है सा, घर री इज्जत घर री बरकत घर री रौनक ऐ सगली बातें अपनी बाई बेटिया रे स्वभाव माथे टिकेड़ी रहवे। जठे मीठी वाणी और हंसतो मुंडो होवे नी बठे लक्ष्मी जी खुद पगलिया करती आवे। अपने आपनो घर परिवार राजी खुशी राखनो है, आपस मायने प्रेम राखो, सासू जी री दो बात सुन भी लो तो हिवड़े में मत लगाओ। सोचो कि माँ ही तो है, जत्थे हंसर बात टाल दोगा नी तो देख जो घर रो वातावरण कितनो पुठरो हो जासी। बनो बातारी साख तो कितनी भी लंबी खींच लो जी को नहीं भराए, पण अब थे सुनो ओ छोको सो गीत और मैं पानी रे दो घूंट पीर पाछी थारे खने आऊंला।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वासा वाकी तो पूठ रो गीत सुनायो हो घर रे आंगन रे माए सुगंध बिखेर तो।

गीत सुन तो सचमुच यहाँ लागे एक एक कोनो झूम उठ्यो है। कितनी फूट रही ताण ही, हिवड़ो एकदम राजी हो गयो सा। मैंने जब आपा राजी खुशी री बाता करा तो मन मारी दादी सारी एक बात याद आ जावे। दादी सा कया करता खुशियाँ कोई बाजार मायने मिलन वाली मिठाई कोनी, जिकी थे पैसा सो तोलर ले आवला। खुशियाँ तो आपने घर रहे छोटा छोटा कमारे मायना हुआ है, अपनी बोली मायना है, आपरे हेतरे मायना है, छुपियोड़ी रहवे है। सच्ची बात है ऐसा, आपा दिन भर कितनों काम कर ले वहाँ, पर मुंडे रे माथे एक छोटी सी मुस्कान राखर करा तो पूरे घर रो माहौल खुशनुमा हो सावे है। बहनों पैसा री कदर और अन्न री इज्जत हमेशा करनी चाहिए जाए। आजकल टाबर के करे सा थाली रे मायने अनाज जूठो छोड़ देवे, रोटी लेवे तो रोटी रो टुकड़ो छोड़ देसी, कैसी मैं तो धाप गयो। पर टाबरा ने आपा ने सिखावनो चाहिए जाए कि अन्न रो अपमान कदी नहीं करनो। बने बालपन सु ही सिखावनो चाहिए जाए कि थाली रे मायने इत्तो ही लेओ जितनी भूख होवे, अन्न री इज्जत करनी चाहिए जाए। पैसा कमावना घना दोरा है पर गमावनो सोरो है। मर दादी सा कहन था कमाई कितनी भी होवे पर उन मायने सु 2 रुपया बचार राख जो आडे बखत काम आवे।

ही साचो धन है जिको आडे वक्त आपनों साथ देवे है। और सब सुचो की बात बोली री मिठास, आपनों अठहरी बोली रे मायने बिया भी कितनी या खांड जू मीठी मिठास होवे है। कदी कदी घर मायने कोई अनमन भी हो जावे तो उन वक्त उतावलो नहीं होनो, उन वक्त थोड़ो सो धीरज रखो, पानी रो घूट पियो और बात ने हंसर टाल दो। कहवे है नी कि एक चुप सो सुख, जद थे शांत रहोला तो सामने आलो खुद ब खुद शर्म खा जासी और थारी इज्जत उनरी आंख्या रे मायने बढ़ जासी। तुम्हारी लाडली बहनों आ काम री बात्या पोतिया रे मायने लिखोड़ी कोनी मिले सा, ए तुम्हारी गांव री दादी नानिया रा सदियों पुराना तजुर्बा है सा, जिका आज भी आपने घर आंगन रे स्वर्ग बना रखा है। ई बातें ने अपनी बुआ ने टाबरा ने अपनी बेटियां ने बाया ने जरूर सिखाई जो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मैडम कितो पुठरो गीत अभी आपा ओ सुनियो हो तो मैं जानता जानता एक बात और मेरे मन में खटकन लाग रही है जिके मैं थरसा के सांचो करना चाहूँ। मैडम आपा ने अपना टाबरा ने खूब पढ़ावनो है लिखावनो है और बिना आत्मनिर्भर बनानो है और ब्याह रे मायने ना तो दहेज लेनो है ना ही देनो क्योंकि दोनों ही मोटा अपराध है। जो कोई भी शादी ब्याह रे मायने दहेज री मांग करे या दहेज खातर टाबरा ने परेशान करे तो बिन खातर अपना कानून भी बनेड़ा है बना सजा भी मिले है और बना जुर्मानों भी भुगतनों पड़ सके है। तो इन वास्ते आपने जिम्मेदारी है कि आपा टाबरा रे ब्याह मायने सिंपल साधारण तरीके से ब्याह कर सा क्योंकि सबसे जको मोटी चीज है बात तो है आपनो टाबर रो स्वभाव बांगी सीरत और बांगा संस्कार जे घर रे मायने सुख शांति बनाए रखा है और वो ही सबसे मोटो धन है। इन वास्ते आओ बहनों आज आपा सगला मिलर आ सौगंध खावाला कि ना तो दहेज दे सा और ना ही दहेज लेवाला। आपने लाडलिया ने खूब पढ़ावाला उनने मजबूत बना सा जिके सुके है समाज री आ कड़वी रीत हमेशा सारू मिट जासी। तो चलो सा आ तो है घनी काम री बात तो चलते चलते थाना एक और चोखो सो प्यारो सो गीत सुना दा।

0: आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक

0: देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान

0: लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
1: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।

0: मन की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुना। फिल्म का नाम था सच्चाई। गीत के बोल राजेंद्र किशन के थे और संगीत दिया था शंकर जय किशन ने।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में मन चली फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अर्पण। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। फिल्म का नाम था आरोप। गीत के बोल माया गोविंद के थे और संगीत भूपेंद्र हजारिका का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था भीगी पलकें। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 3 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे। ये प्रसारण केवल न्यूज़ ऑन एयर ऐप और FM पर चालू रहेगा। मीडियम में पर रख रखाव के चलते प्रसारण बंद रहेगा।

प्रोग्राम मेरी ही पसंद। 3:30 पर आज उर्दू सर्विस पेश करेगी मारूफ शायर डॉक्टर बशीर बद्र पर एक खुसूसी ताज़ियती प्रोग्राम। 4 बजे से आप फिल्मी मौसिकी का लुत्फ ले सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम के 4:50 तक जारी रहेगा। शाम 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे आज की दूसरी मजलिस ख़त्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मयार नहीं हो सकता। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। भारत और कनाडा ने साल के आखिर तक CEPA बातचीत मुकम्मल करने के अजम का इरादा किया है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा हासिल किया है। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों को सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मामलों में तेज रफ्तारी से किए गए फैसलों की ज़रूरत होती है, जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की दरख्वास्तों में फैसले उसी रोज सुना देने चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुना देना चाहिए और अपलोड कर देना चाहिए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया है। जनाब प्रधान ने आज कहा कि पेपर अफ

होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए। डीडी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि बगैर किसी गलती के एक मुनज्जम और मुनासिब ढंग से दोबारा इम्तहान का इनेकाद किया जाएगा। तलबा से खिताब करते हुए प्रधान ने कहा कि उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है और उन्हें इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। वजीर मौसूफ ने इस बात का फिर यकीन दिलाया कि बढ़ती हुई तशवीश के पेश नज़र गलती से पाक इम्तहान का इनेकाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इम्तहान के अमल में मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मैार इख्तियार नहीं किया जा सकता। रूस में बैन अवी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार ममालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशत को शह देने वालों को मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निपटने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर मास्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि जनाब डोभाल ने मास्को में बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। फोरम की मीटिंग के मौके पर जनाब डोभाल ने रूस के अपने हम मनसब शोइगु के साथ भी मीटिंग की। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तजारत और सनत के 50 से जायद सरबराहों के साथ एक गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल और भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने मुश्तरक तौर पर इस मीटिंग की मेज़बानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने भारत की तेज रफ्तार तरक्की असलाहत पर मबनी तजारती माहौल और आलमी सरमाकारों के लिए वसी तर मौके पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत अमेरिका तिजारत को वसी करने, सरमायाकारी में इख्तिरा पैदा करने और मुश्तरका खुशहाली के लिए सप्लाई चेन शराकत दारी के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने माहौल के लिए साजगार तवानाई के अपने सफर में एक तारीखी संग मेल तय किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत 40 लाख घरों को छत पर नफ किए जाने वाले शमसी तवानाई के निज़ाम की सहूलत फराहम कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि काबिल तरजीह तवानाई से मुतालिक एक पहल से भी ज़्यादा इस यकसर तब्दीली लाने वाली स्कीम से शहरी महज तवानाई खर्च करने वाले लोग नहीं रह गए हैं, बल्कि वो बिजली के पैदाकार भी बन गए हैं। इस स्कीम से कुनबे अपने बिजली के अखराजात में कमी कर सकेंगे, सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेंगे और बिजली के अखराजात पूरी तरह ख़त्म कर सकेंगे। वजीर मौसूफ ने ख़ास तौर पर कहा कि हर घर में जब शमसी तवानाई होगी तो मुल्क तवानाई को यकीनी फरहमी, माहौलियाती इस्तेहकाम और खुद कफील विकसित भारत के तस्वूर को पूरा करने की जानिब बढ़ेगा। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरी ने कहा कि साबिक वजीर आजम एक दूरअंदेश रहनुमा थे और उन्होंने किसानों की फलाह बहबूद और भारत की दही लोगों की तरक्की के लिए पूरी जानफिशानी के साथ काम किया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि साबिक वजीर आजम की पूरी ज़िंदगी मुल्क के किसानों, मजदूरों और गांवों की तरक्की और खुशहाली के लिए गुजरी। जनाब शाह ने इस मौके पर भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के आज़ादी की जद्दोजहद से लेकर एमरजेंसी की मुद्दत के दौरान जमहूरी कदरों को मुस्तहकम करने में कलीदी रोल अदा किया। भारत और कनाडा ने इस साल के आखिर तक जामे इक्तिसादी शराकत दारी मुआहदा CEPA से मुतालिक मुज़ाकरात से इत्तेफाक करने के तहत अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया है। तिजारत और सरमायाकारी फोरम पर भारत और कनाडा के मुश्तरक बयान में सनअत और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल और कनाडा के बैन अल-अक़वामी तिजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू ने बाहमी तौर पर सूदमंद CEPA मुआहदे को आगे बढ़ाने के तहत अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया। वजीरों ने दोनों मुल्कों के में कारोबारी मौके और माशी तरक्की को फ़रोग देने वाले नतायज हासिल करने के लिए दो तरफ़ा तजारत और सरमाकारी को मुस्तहकम करने के इरादे का भी

0: टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक मजबूत मईशत के तौर पर उभरा है और इसलाहत और साजगार पॉलिसी की बदौलत टेक्सटाइल शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत टेक्सटाइल मार्केट 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बकदर है और हुकूमत इसे 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक ले जाने के लिए काम कर रही है। एयर इंडिया परवाजों में तातुल की वजह से इसराइल में रिहाइश पजीर 40,000 से ज्यादा भारतीयों में तश्वीश का माहौल है, जो जाती या पेशा वराना वजूहत से या फिर खत्ते में जारी या गैर यकीनी सूरत हाल से मोफर की तलाश में भारत आना चाहते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली यूएन आर्म फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कम से कम 6 कारकुन हलाक हो गए। ये लोग देर रात एक तूफान के दौरान एक जेर तामीर पुल के गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। 2026 की एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलेटिक्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबले में कई रिकॉर्ड बनाए। खवातीन के 100 मीटर मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। वो चैंपियनशिप के इस मुकाबले में तमगा जीतने वाली 25 साल में भारत की पहली खातून बन गई हैं। नितिन गुप्ता ने 5,000 मीटर के रेस वॉक में खिताब जीता और खवातीन की ट्रिपल जंप में साधना रवि ने 12.78 मीटर्स की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा जीता। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तैद तलबा के तहफ़ का यकीन दिलाया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफ टॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संग मील तय किया है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

आशु भोसले की आवाज में ये कलाम अभी आपने उमराव जान फिल्म से सुना। अब सुनिए भूपेंद्र को, फिल्म है बाजार।

आशा भोसले की गाई हुई इस गज़ल के साथ ही जो आपने सुनी मजदूर फिल्म सी, आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। समय गुज़श्ता रोज़ उर्दू के मारूफ शायर डॉक्टर बशीर बद्र इस दारे फानी को अलविदा कह गए। उर्दू सर्विस की जानिब से पेश है उर्दू अदब के इस दरख्शां सितारे के नाम पुरखलूस खिराजे अकीदत ये ताजियती प्रोग्राम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। समीन एक ऐसा शख्स इस जहां से उठ गया जिसने पीढ़ियों को अपने खूबसूरत दिलगुदाज अशार से मुतासिर किया। उनकी शायरी कभी नगमा बनकर तो कभी जिंदगी का फलसफा बनकर हमारे इर्द गिर्द सांस लेती रही। उस शख्स का नाम है डॉक्टर बशीर बद्र। बशीर उर्दू के उन शुरा में से थे जिन्होंने शायरी को सहल अंदाज में लोगों तक इस तरह पहुंचाया गोया सबके दिल की ही बात हो, और अपने इसी अंदाज या इसी उसलूब की बदौलत वो हर खासवाम के दिल की जबान बन गए। उनका चले जाना गोया शायरी के एक मुकम्मल दौर का खात्मा है, लेकिन अपनी शायरी अपने अल्फाज और अंदाज के साथ हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे और हमारे लबों पर उनके गीत उनकी गजलें हमेशा यूं ही मचलती रहेंगी। उनकी गजलों में मोहब्बत भी है, तन्हाई भी है, वक्त की बेवफाई भी है और इंसानियत का दर्द भी है।

0: डॉक्टर बशीर बद्र, जिन्होंने मोहब्बत, जुदाई, ज़िंदगी और इंसान दोस्ती को नहायत सादा मगर दिल में उतर जाने वाले अंदाज में बयान किया। बशीर बद्र उर्दू शायरी का एक ऐसा मोतबर नाम थे जिन्होंने कई दहाइयों तक अपनी मुनफरद गज़लों के ज़रिए कायरीन और सामईन के दिलों पर राज किया। उनकी शायरी में मोहब्बत, जुदाई, तन्हाई, रिश्तों की नज़ाकत, यादों की कसक और इंसानी जज्बात की सादगी भरपूर अंदाज में झलकती है। वो जब भी किसी मुशायरे में शरीक होते थे तो सामईन बड़ी बेताबी से उनका इंतज़ार करते थे। उनका मुनफरद लहजा और सादा मगर दिल में उतर जाने वाला अंदाज उन्हें दिगर शोरा से मुमताज़ बनाता था। बशीर बद्र की शायरी आने वाली नस्लों के लिए भी एक कीमती अदबी सरमाया रहेगी और उर्दू अदब में उनके खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू शायरी का वो मोतबर नाम है जिन्होंने गज़ल को जदीद एहसासात से जोड़ा।
1: उनका असल नाम बशीर अहमद है, लेकिन दुनिया उन्हें बशीर बद्र के नाम से जानती है। 15 फरवरी सन 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पैदा होने वाले डॉक्टर बशीर बद्र ने इब्तदाई तालीम के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और पीएचडी मुकम्मल की। बाद अजां उन्होंने तदरीसी जिंदगी का आगाज किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद तकरीबन 17 साल तक मेरठ कॉलेज में उर्दू शोबे के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बशीर बद्र ने सिर्फ 7 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी जबानों पर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उनकी शायरी की सबसे नुमाया खूबी शायरी की सादगी और जज्बाती गहराई थी, जिसने उन्हें अवामी सतह पर बेहद मकबूल बना दिया।

0: सन 1999 में उन्हें अदब के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिंदुस्तान के चौथे बड़े शहरी एजाज़ पद्मश्री से नवाजा गया था। इसी साल उन्हें उनके मजमुआ आस पर साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा उन्हें उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और बिहार उर्दू अकादमी समेत कई कौमी और बैन अल-अक़वामी एजाजात से नवाजा गया। उनकी शायरी देवनागरी और गुजराती रस्म الخط में भी शाई हुई, जबकि उनके कलाम के अंग्रेजी और फ्रांसीसी जबानों में तराजम भी हुए।
1: डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी की सबसे अहम बात उनकी सादगी है। वो मुश्किल अल्फाज या पेचीदा इस्तियारों के बजाय आम बोलचाल की जबान में गहरी बात कह जाते हैं, और इसीलिए उनके अशार सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। उनके चंद अशार मुलाहिजा हों।
0: न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।
1: अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे।
0: उसकी आंखों को गौर से देखो, उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चिराग जलते हैं।
1: सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
0: मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला।
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
0: दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा न हो।
1: अगर तलाश करो तो कोई मिल ही जाएगा, मगर कौन हमारी तरह से तुमको चाहेगा। हमारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, हमारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।
0: डॉक्टर बशीर बद्र सिर्फ अदबी हलकों तक महदूद नहीं रहे बल्कि आम लोगों में भी बेहद मकबूल हुए। उनके अशार मुशायरों, किताबों, सोशल मीडिया और मौसीकी की दुनिया में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। बहुत से गुलकारों ने उनकी गज़लें गाईं और लोगों के दिलों तक पहुंचाया। उनका अंदाज ऐसा है कि नौजवान नस्ल भी उनसे जुड़ाव महसूस करती है। मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने एक निजी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, बशीर बद्र के इंतकाल से पैदा होने वाले खलक को पुरकरना नामुमकिन है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है और वह मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे। 1970 से लेकर जब तक

0: वो मुशायरों में शिरकत करते रहे, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी हमारा साथ बना रहा। मैं कह सकता हूँ कि हमारी गज़ल की दुनिया का एक अजीम सितारा इंतकाल कर गया।
1: चराहों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम और मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।

अभी आप सुन रहे थे मारूफ शायर डॉक्टर बशीर बद्र पर उर्दू सर्विस का ये पुरखलोस खराज अकीदत, एक ताज़ियती प्रोग्राम। पेशकश नवीन कुमार की थी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश हैं चंद फिल्मी नगमे।

कुमार सानू की आवाज़ में ये नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था कसूर। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नज़र कर रहे हैं। श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म है तुम सा नहीं देखा।

अभिजीत की आवाज में ये नगमा भी अपने बादशाह फिल्म से सुना। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में है। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये नगमा था प्यार झुकता नहीं फिल्म से। अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की फिल्म है मिस्टर आशिक।

0: नलेंद्र सिंह की आवाज में ये नगमा हमने आपको बॉबी फिल्म से सुनवाया। इसके साथ ही फिल्मी मौसिकी का आज का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शाहिद हबीब। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बेमिसाल कामयाबी थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर जंगबंदी की दरखास्त करने पर मजबूर कर दिया। भारत आने वाला तेल टैंकर निसोस के रोस ने कामयाबी से आबनाई हुरमुस को पार कर लिया है और वो अगले महीने की 3 तारीख तक विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया है। IMD ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। ऑपरेशन सिंदूर पर मबनी यादगारी किताब का इजरा करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक गैर मामूली कामयाबी थी, जिसमें भारत ने सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को जंगबंदी की दरख्वास्त करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन उन तमाम जंगों से मुख्तलिफ था जो भारत ने अब तक लड़ी है। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में राजनाथ सिंह ने कहा कि ये इशात सिर्फ तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इसमें बहादुर फौजियों के ज़ाती तजुर्बात और जज्बात की भी अक्कासी की गई है। उन्होंने कहा कि यह किताब जदीद अंदाज की जंग के इंसानी पहलुओं को भी उजागर करती है, जहाँ क़्यादत, जुरत, दबाव के माहौल में दुरुस्त फैसला साजी और अज़्म व वाबस्तगी हिकमत अमली को कामयाबी में बदल देते हैं। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि यह किताब उन जाबाजों को खराज तहसीन है जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम दिया और अवाम को फौजियों की कुर्बानी, लगन और साबित कदमी से करीब से रोशनास कराती है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि इस किताब से तहरीक हासिल करें और ऐसे जिम्मेदार शहरी बने जो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ्फुज के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों की कदर कर सकें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इनकिसारी, अफवो दरगुजर और महजब रवैया शख्सियत का असली जेवर हैं। संस्कृत का एक कौल शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इन खूबियों के साथ मुल्क के अवाम एक तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील के लिए तेजी के साथ सरगर्म अमल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के माबैन बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली UN अमन फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कायम करने के मिशन के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में खिदमात अंजाम देने वाली बहादुर मर्दों ख़वातीन फौजियों की सताइश की जो आलमी सतह पर अमन और सलामती को बरकरार रखने के अपने अज़्म पर कायम हैं। कॉमर्स और सनत

0: ये दूसरे मरहले की ज्यादा दिनों की पेशगोई करते हुए आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान मामूल की बारिश होगी। 2026 के एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलेटिक्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में कई रिकॉर्ड बनाए। खवातीन के 100 मीटर दौड़ मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बेमिसाल कामयाबी थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर जंगबंदी की दरखास्त करने पर मजबूर कर दिया। भारत आने वाला तेल टैंकर निसोस के रोस ने कामयाबी से आबनाई हमरुस को पार कर लिया है और वो अगले महीने की 3 तारीख तक विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। आईएमडी ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात शाम के 5।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं और ये वक्त होता है युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का।

युववाणी सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं को बलविंद्र कल्याणा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों के दिन और गर्मी से बचकर रहना हमारी पहली जरूरत होती है। इस गर्मी में क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, सबके लिए जरूरी है एक बचाव जो हमें स्वस्थ रख सकता है। बचाव के लिए सिर ढक कर चलें, जरूरत ना हो तो घर या कमरे से बाहर ना निकलें, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, हो सके तो उन पेय पदार्थों का उपयोग करें जिनकी तासीर ठंडी होती है। बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखें, इन्हें धूप में ना निकलने दें। स्कूल की छुट्टियां भी तो इसीलिए ही की जाती हैं ताकि बच्चे गर्मी से बच सकें। इन दिनों तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे में अपनी यात्राएं टालने की कोशिश करें। अगर आप स्वयं के वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो अपने वाहन की फ्यूल टंकी पूरी ना भरवाएं। टायरों में हवा का दबाव भी कंपनी द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर रखें ताकि अत्यधिक गर्म सड़क पर टायर फटने की स्थिति ना आए और हमें कोई नुकसान ना हो। पेड़ पौधों को बचाने के लिए उन्हें पानी दें और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें ताकि हम अपने जीवन के साथ साथ औरों का जीवन भी बचा सकें। यही मानवता है, हमें मानवता सुकून देती है और सुकून ही तो गीत को जन्म देते हैं। इसलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा। ये आवाज़ें आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था, संगीत अनु मलिक का था और फिल्म का नाम था आवारगी। दोस्तों, गीत और संगीत भी अपने आप को स्वस्थ रखने का जरिया है। हमें अपने आप को व अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए समय निकाल कर कुछ पलों का आनंद लेना चाहिए संगीत के साथ। जरूर लें, मौसम चाहे कैसा भी हो, दिल और दिमाग अगर स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, तो ये भी एक सुकून देने वाला पल होता है और सुकून ही तो जीवन है दोस्तों।

थानेदार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे पंकज उधास और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को इंदिवर ने लिखा था, संगीत बप्पी लहरी का था। दोस्तों आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं मधुर मधुर गीत और कुछ जानकारियां और इनके साथ साथ कुछ बातें जो हम और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं और सुकून हमें मिलता है गीतों से।

तुमको ही मांगा करते थे। ये मधुर आवाज़ें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की थीं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में। और दोस्तों फिल्म का नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। दोस्तों अगर बात करें युवाओं की, तो जिस तरह इंजन को चालू करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह युवा राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्र की प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास और भविष्य इसी पर निर्भर करता है। और इस युवा वर्ग में शक्ति और क्षमता पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसमें राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाने में सक्षम माना गया है। किसी भी राष्ट्र को प्रौद्योगिकियों, शोध, विज्ञान, चिकित्सा यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रगति और विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो युवाओं को। जब युवा अपने प्रयासों के साथ ईमानदारी से यही काम करता है तो इन्हें चिन्हित किया जाता है। भारत में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है जिन्हें यदि बेहतर तरीके से गाइड किया जाए तो ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। हमारे युवाओं ने बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं।

दोस्तों आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और पंकज उधास की आवाजों को। इस गीत को अनजान ने लिखा था, संगीत बप्पी लहरी का था और फिल्म का नाम था घायल। हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे युवाओं की और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की। हमारे ऐतिहासिक समय से यह देखा जा सकता है कि हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन्हें एक सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करना है। युवा पीढ़ी के उत्थान के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं, क्योंकि वे बड़े होकर राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगे। गरीब और विकासशील देश अभी भी युवाओं के समुचित विकास और शिक्षण में पिछड़े हुए हैं। एक बच्चे के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बनने का सपना देखता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कुछ बच्चे बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य और कार्य करने के लिए पैदा होते हैं। बच्चा अपनी शिक्षा पूरी करता है और कुछ हासिल करने के लिए कुछ सीखता है, और जिससे कि वो देश के काम आ सके, क्योंकि युवाओं में अपार क्षमताओं का भंडार होता है। समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर काम करके युवा दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकता है। युवाओं को प्रत्येक पहलू में प्रगति करने के साथ साथ एक राष्ट्र को हर एक दृष्टिकोण से प्रगतिशील बनाने की क्षमता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सही दिशा में काम करने पर मुख्य ध्यान देना चाहिए।

लता मंगेशकर की आवाज़ को आप सुन रहे थे। अनजान के बोल थे, बप्पी लहरी की संगीत रचना थी और फिल्म का नाम था लव लेटर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल। बात अगर शिक्षा की करें तो शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यह एक व्यक्ति को जीवन में एक अलग स्तर और अच्छाई की भावना को विकसित करता है। और शिक्षा किसी भी बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी हल करने की क्षमता रखती है। यह शिक्षा ही है जिससे कि हम सब प्राप्त कर सकते हैं। हमसे कोई भी जीवन के हर एक पहलू में शिक्षा के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकता। हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक और ताकि और मोड़ती है यह शिक्षा, और इसे हमें प्राप्त करना होता है सबके साथ मिलकर और सबके साथ स्नेह लेकर।

आपने नरसिम्हा फिल्म का गीत सुना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। दोस्तों, आज के इतिहास की अगर बात करें तो 1970 में यूनाइटेड रूस ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आज ही के दिन यानी कि 29 मई को। 29 मई 1972 में अभिनेता और पृथ्वी थिएटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ था। और आज ही के दिन 1983 में नील बोनेट ने चार्लोट मोटर स्पीडवे पर दुनिया के 24वें दौड़ में अपनी जीत दर्ज करवाई। और आज ही के दिन 1990 में यूरोपीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास की स्थापना हुई। 29 मई 1990 को दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में आए भीषण भूकंप में 56 लोग की मृत्यु हुई। और आज ही के दिन 1996 में इसराइल में हुए पहले सीधे प्रधानमंत्री चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की। आज आप सुनेंगे एपिसोड 20। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे चौपाल। आज की प्रस्तुति रहेगी रमेश चावरिया की। आज के चौपाल में आप सुनेंगे गीता रो गजरो। इसके साथ साथ आप सुनेंगे बाजार भाव और मौसम की जानकारी। समय रहेगा संध्या 7 बजे और प्रस्तुति रहेगी रमेश चावरिया की। 7:45 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत और रात्रि 8 बजे आप सुनते हैं एक ही फिल्म से। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9 यानी कि अंग्रेजी में समाचार। ये सभी समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुनना न भूलने आज की रात 9:30 से आप सुनेंगे हेलो मिट्टी दी खुशबू। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी दुर्गाराम की। कार्यक्रम के संयोजक हैं नवीन सिसोदिया और समय एक बार फिर से नोट कर लें रात्रि 9:30। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और हमारी आज की सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:05 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सराय की।

द्रौपदी की लाज बचाने वास्ते भगवान कृष्ण ने हूँ वेले उनकी साड़ी को भरी सभ्या बचाया तो सिंधु दरिया के अमृतवाणी ठाई कि मैं उदय चंद के रूप देवकी माँ की कोखों पिता श्री रत्नराय के घर जन्म घिंसा हूँ वेले दरियाए सिंध एक सुंदर बाल सोने के पींघे झूलता होया मछली की सवारी के उत्ते सवारी करता हुआ नज़र आया तो लोगों ने जय झूलेलाल के जयकारे लाने शुरू कर दिते। भगवान को हाथ जोड़ के अरदास की कि हिंदू समाज को मिर्ख शाह के जुल्म तो रक्षा करन। भगवान ने सबको अपना आशीर्वाद दिता तो यकीन दिवाया तो मिर्ख शाह के जुल्म तो मुक्ति दिवावन का भरोसा भी दिवाया। हिंदू समाज खुशी की लहर फैल गई तो मिर्ख शाह को भी जेड़े वेले खबर मिली तो वह अपने वजीर आहा को खबर की सच्चाई का पता करने वास्ते सिंध दरिया के जितां हिंदू लोग पूजा पाठ करते पे हैं भेजा। आहा सिंध दरिया से जेड़े वेले पहुँचा रात को हूँ अजीब नज़ारा दिठा जिंदे विच साई झूले लाल एक घोड़े से सवार थी के हथ तलवार गिद्दी हुई तो पानी के उत्ते चलते आते आहा को मिर्ख शाह को पैगाम देवन वास्ते उन्हें फरमाया आहा वजीर के नाते हूँ को समझावे तो वह अपनी हठ धर्मी को छोड़ देवे अपनी प्रजा को अपनी औलाद वांगू रखे हुंदे हुने को अपने तरीके नाल हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन लिए रावण की खुली छुट्टी देवे क्योंकि सब ईश्वर रब एको ही है। असा सारे हिंदी औलाद हैं हिंदू होवें या मुसलमान हिंदे च कोई भेदभाव न रखा वजे। मिर्ख शाह ते हुंदे दा सारा झुग्गा खत्म थी वे सी अगर वो मेरी गाल ना मन सी हुकु ही दुनिया विच ना इस्लाम बचसी तो ना मुसलमान बचसी हुने ए भी आ को दस्या मैं जल्दी मिर्ख शाह को खुद मिलन आसा। साई रतन राय ने अपने बाल को पढ़न वास्ते यानी शिक्षा दे वास्ते दीक्षा दिवाउन दे किसे गुरु गोरखनाथ कोलो भेजा। गुरु जी ने थोड़े अरसे दे विच पछाण कीता कि झूले लाल ते भगवान वरुण दे अवतार हैं ते हुने को पूरे वेद पुराण गीता ग्रंथ दे इलावा बिन्ने धर्में दे ग्रंथ ते महापुरुषों दे जीवन का ज्ञान पहले तो ही है। यीशु मसीह बाइबल मुहम्मद साहब ते कुरान भी ते जैन मत बौद्ध मत का भी ज्ञान है। मिर्ख शाह को हर वेले झूले लाल दे चमत्कार सुपने में ही आवन लग पे ते वो हुंदे कत्ल दा सोचन लग पिया। मिर्ख शाह अपने वजीर यूसुफ को जहर का प्याला पिलावन वास्ते झूले लाल के घर भेजा। दूर तो झूले लाल जड़ा हूँ वेले झूले दे विच सुता होया है जोर का फूका मारा तो जहर का प्याला परे जमीन ते ढह पिया ते जिथा जहर डठी उथा हूँ वेले भा लग गई। वजीर हैरान थी गया वो अपनी जान बचाने वास्ते उतों भज गया। वजीर ने वापस बादशाह को सारा हाल सुनाया लेकिन बादशाह को पखंड समझा तो हूँ झूले लाल को कई हालत भी हथकड़ी बद के पेश करने का हुक्म दिता। मिर्ख शाह के सिपाही जेड़े वेले झूले लाल साई को पकड़ गए उन्होंने साई झूले लाल को दरियाए सिंध के घोड़े ते हथ विच तलवार ते हुंदी सेना नाल डिठा ते निकलदे डिठा। मिर्ख शाह ने सारे सिपाही हुंदे मारे गए। बादशाह ने एक दफ़ा फिर अपनी फौज को हुक्म दिता तो झूले लाल ने कई तरह भी वो पकड़िया वजे वो हूँ को पकड़ न सके। वो बादशाह की फौज जेड़े वेले उनके सामने लड़न वास्ते तैयार थी कि आवे तो सारे के सारे वो हूँ वेले मार दिते वजन। बहु वड़ी अंधारी जी आ गई रेत मिट्टी नाल चारों तरफ गुबार छा गया तो झूले लाल ने अग्नि का आह्वान किया तो महल को ते हुंदे बादशाह दे तख्त को भा दे वांगू सड़न दी महसूस थीवन लग गई। भा दियां लपेटां दे विच ओ सारे हुंदे बाल बच्चे सब हुंदे जान दे वास्ते पै गए ते उन्होंने फिर अपने आप को झूले लाल को अर्पण किया जय झूले लाल दे नारे लावन लग पे ते मिर्ख शाह अपने बालें बच्चों दे नाल सई झूले लाल दे पैरीं पै गए ते माफ़ी मंगी ते सई झूले लाल दी शरण विच आ के उन्होंने माफ़ किया ते सारे को उन्होंने सिंधु नदी दे विच इशनान करन दी सलाह दित्ती ते जोत जलवाई। मिर्ख शाह को हिदायत कीती जो हिंदुओं को तंग ना करे ते अपने धर्म दे मुताबिक पाठ पूजा करन देवे मुसलमान ना बनावे ही तरह मिर्ख शाह को अपना चेला बनाया। साई झूले लाल दे पिता साई रतन लाल ते झूले लाल को भी महसूस किया कि भगवान का अवतार हैं।

लेकिन सही झूलेलाल दे वड्डे ॾू भेरा हुन ने हिकु भॻवान न मञा ते पूजा करण तो इनकार कर दी। सई झूलेलाल ने जल ते जोत नाल सारे शहर वाले को पूजा करवाई, वरुण भगवान का मंत्र जपन करने वास्ते आख्या। पगुर लाल सई जड़ा हुंदा चेहरा भिरा ही झूलेलाल की शरण विच दीक्षा घिन हुंदा चेला बन गया ते हुंदे माँ प्यो को हुकुम भगवान का रूप जाना मत्था टेकया, लेकिन हुंदे भिरावां ने हुकुम ही दरियाई पंथ को कबूल ना किया। सई झूलेलाल ने संत पगुर लाल को अपना उत्तराधी बनाया ते हुकुम ठक्कर दी उपाधि दी। वो अज तक भी संत झूलेलाल दे जिथा भी स्थान हैं उत्थां उन्हें दे जे दरियाई पंथ का प्रचार थींदे प्रसार थींदे वो हुंदे विच ठक्कर ली उन्हें को उपाधि मिलती है जिहड़ा उन्हें दा मेन गद्दी दे उत्ते बांधे। रोड़ी शहर विच झूलेलाल साईं दी पूजा जिंदा पीर दे नां ते शुरू थी। दरियाई पंथ विच जल और ज्योति दी पूजा अर्चना आपसी भाईचारा प्रेम दुखे दी भुखे दी मदद करना नाम जपना गुरु वस्त्र पामना धारण करना जेको खिता आदन जिससे सभी मनोकामना जनता पूर्ण थे दिन ते देग जेंदे विच लंगर चलते तो सेसा बनती है उनका कढ़ाई दे विच खाना बनते वो कहीं भी खत्म नहीं थींदा जितने लोग भी आ वन हूँ वो पूरा थींदे। दूजा उनका अवतार जड़ा झूलेलाल दासा देखते हैं वो अपनी कमर दे विच तलवार नाल बद्धी रावणा हुंदी अकाल मृत्यु नहीं थींदी हुंदे ते दुश्मन हुंदे सामने ठहर नहीं सकदा डफली वजावण सुरताल अपने आप मिल वेंदी है ते लोग भजन गावण नाल पूरी मस्ती च आ वेंदन। मटका या घड़ा जेंदे विच जल अमृत वांगू मिठा ते ठंडा पी के लोग निहाल थी वेंदन। सावण महीने तक पूजा थींदी है पूजा दे बाद सेसा यानी प्रसाद वंजा वेंदे शोभा यात्रा निकलदन जुलूस निकलदन झूलेलाल दी जीवन झांकियां दिखावण वास्ते मंदिर ते तलावा नदी दे भेट पूजा ते जोत जलाई वेंदी है। भगवान झूलेलाल आरती गाई वेंदी है अमर कथा दी झूलेलाल दे ग्रंथ का भोग पाया वेंदे चेट चंदी सारा सिंध समाज खासकर दरियापंथी चेट चंद का त्यौहार नवे साल की तरह मनेंदन। ही जड़े झूलेलाल का जन्म पिया ही ये महीना हिंदू विक्रम संवत का पहला महीना चेट दे विच हर साल मनाया वेंदे ये हिंदुएं का नवा साल है। ब्रह्मा ने भी ही दिन ही संसार की रचना की है। सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग दे विच इह चेत दे महीने दी पहली तरीक को नवा साल मनाया वेंदा है। वरुण अवतार भी झूलेलाल दा अवतरण दरिया दरियाई पंथ भी जन्म मुबारक भी ये सारे ही चेत महीने विच मनाए वेंदन। ये जल ज्योति भगवान दी मूर्ति ते पूजा पाठ पंजरा गांदन ते छेद गाटे नाल झूमर ते नाल करेंदन। लोग दिहाड़े हर वेले सेसा करेंदन ये सिंध मुल्तान मुजफ्फरगढ़ विच ते हुण सारे हिंदुस्तान दे विदेशें विच भी जित्थां जित्थां सिंधी समाज वसदा पे मनाया वेंदे ये झूलेलाल दी जयकारे गीत गाए वेंदन। झूलेलाल सलामत सदा बेबरामद कंधड़ी तेरी ते मैं आई वे मैं घोल वजाई आई दी आस पुजाई आई दे सारे कम सजाई कंधड़ी तेरी ते पछड़ा तू मेरे बछड़े को दे बछड़ा या मनता मंगया वेंदन। सिंधु देश की भूमि धन्य है जिथा वरुण देव दे अवतार श्री उदयचंद सिंधु नदी दे उत्ते झूलेलाल ने अपनी लीला भूमि बनाया ते ही हिंदू समाज की मानसिक आध्यात्मिक रक्षा की थी। बालंबा ते तीर्थ स्थान बनाया भगवान झूलेलाल गौ भगत भी हैं निर्धन ब्राह्मण की एक गौ जेको वो कपिला सदेंदा है पुनर्जीवित कराया हुंदा कष्ट निवारण किया। जन्म माता दे बचपन ते 2 साल तक अपना खीर पिलेंदी है लेकिन गऊ दा खीर तां हमेशा पीता बन सकदे और लोग पींदन ही संग लोग गऊ को माता समझेंदन। मक्खन खीर मलाया दित्या मैं ते को अन्नदाता मावे वांग पलेंदी रह गयुं तां छड्यो गऊ माता किस्मत देख नवाज मेरी मैं क्या राधा क्या चाहता केड़ा जुल्म करेंदा नहीं तू गौ माता दे फल पे खूते जुपते माला देंदे घाया वांदे हलते थी जुत्ती मैं पैर चुमा तू छुरिया मारे गलते गौर नवाज न की तो काका अपने तर्ज अमलते गौ माता दी जय भगवान झूलेलाल दी जय। आज भी भगवान झूलेलाल दे हजारों मंदिर हैं जिथा सवेरे शाम आरती गाई वेंदी है जोत जगाई वेंदी है। भरोच गुजरात दे विच भगवान झूलेलाल दे नाते एक हस्पताल है झूलेलाल दे एक चली

0: ईसा भी लिखा है, नित्य प्रीति पढ़े प्रेम प्रीत चित लाए, ताके कार्य सफल करे श्री अमर लाल तहाँ तहीं जाए। जलपति अविनाशी मैं सिमरूं, तुहे ज्ञान विद्या दो माही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूर्ण करो सब आस हमारी। जय झूलेलाल।
1: संत झूलेलाल दा जीवन दर्शन हुण तुसा डॉक्टर जेसी बता दिए वार्ता सुनदे पए हवे। हुण पेश है सुफियाना कलाम ते कलाकार हिण नुसरत फतेह अली खान ते उन्हां दे साथी।

सुफियाना कलाम तुसा नुसरत फतेह अली खान ते साथियां दी आवाज़ इच सुनदे पए हवे। हुण प्रोग्राम दे आखिर इच तुहाको सुणवेंदे हां इक मुल्तानी काफी पूरन चंद वडाली ते साथियां दी आवाज़ां इच।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी व राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: आमिर चैनल है। शाम की 6:30 अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आज नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं को लेकर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को

0: बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निचले स्तर पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर व्यक्ति तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में हर व्यक्ति तक सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साझा सेवा केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला में राजस्थान सहित 7 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96% पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमों ने आज अजमेर और नीमराना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और कुछ लोगों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई। NIA की अलग अलग टीमों ने अजमेर शहर और नीमराना के कुछ इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निंदड़ में जल संरक्षण कार्यों में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की ओर से आयोजित इको ट्रेल ट्रेक का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधरोपण गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाणा पंचायत समिति में पारंपरिक लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाना है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। इसमें मेन समस्या पानी की बताई गई है। पानी लेकिन ये बता रहा ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान के तहत सिरोही में CSR कार्यशाला रखी गई। इसमें अभियान के उद्देश्यों, जल संरक्षण गतिविधियों और जन भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चूरू और पाली सहित

0: अन्य जिलों में भी जल चौपाल, स्वच्छता अभियान, तालाबों और जोहड़ों की साफ सफाई और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को सूरज की तपिश से राहत मिली है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर और फलौदी में आज भी तेज गर्मी का असर रहा। अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप रही, लेकिन दोपहर बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर तेज अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल भी राज्य के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
1: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, तेज आंधी, अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत। आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जैसलमेर के इकोसिस्टम का गौरव और राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण में जिले को खास उपलब्धि हासिल हुई है। आधुनिक तकनीक की मदद से गोडावन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावन संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रामदेवरा में भी गोडावन का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिसे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कभी गोडावन राजस्थानी इलाकों की पहचान हुआ करता था, किंतु एक समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। अब इनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 21 मई को गोडावन दिवस मनाया गया। इसे लेकर स्वर्णनगरी जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हुए। वन मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क की सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गोडावन प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। जैसलमेर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां दिन का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। झुलसाती गर्मी के कारण पर्यटन व्यवसाय भी थमासा नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में परिंडे लगाए जा रहे हैं। सरहदों पर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी अंगारे बरसाती गर्मी में भी मुस्तैदी के साथ चौकसी कर रहे हैं। जिले के दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटी की सौगात दी गई है। इससे दूर दराज के गांव ढाणियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

0: आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 ईवी स्कूटी का वितरण किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने इन स्कूटियों का वितरण किया। ये पहल नीति आयोग के फंड से शुरू की गई है। इससे दुर्लभ भौगोलिक परिस्थितियों में एएनएम की आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण रोगियों तक टीकों और दवाइयों की पहुंच सुगम हो सकेगी। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फील्ड विजिट में तेजी आएगी और इन सेवाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। जिले को 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र की सौगात मिली है। बीते दिनों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जैसलमेर में ये घोषणा की। गोवट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई करते हुए चिकित्सा मंत्री ने ये ऐलान किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज गड़ीसर सरोवर से हुआ। गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित समारोह के माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत सहित कई काम किए जाएंगे। लोक देवता बाबा रामदेव की स्थली रामदेवरा देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर और रामदेवरा रेलवे स्टेशनों का तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। यहां यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा स्थानीय संस्कृति विरासत का मिश्रण देखा जा रहा है। रामदेवरा स्टेशन पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक और सामरिक रूप से बड़ा महत्व है। इसे देखते हुए स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विशाल पार्किंग, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई सुविधा विकसित की जा रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 250 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में पिछले दिनों वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इस दौरान जल स्रोतों पर चिंकारा, नीलगाय, जंगली मरुबिल्ली, लोमड़ी और मोर सहित विभिन्न जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावण रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेज हाल ताई देश रा 40 लाख घरां रे छत माथे सूरज री रोशनी उं बिजली बनावण री मशीना लगाई ची। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवण वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। और राज्य रा कुछ हल्का माए आंधी बारिश हूँ लू और तपन नू थोड़ो आराम मिलियो। आज और काल घनखर थोड़ा आंधी बारिश और ओला पड़बा सारू चेताई चियो। समाचारा सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राख्योड़ा फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावण रा हुकम दीना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची री पीठ व्यक्तिगत आजादी उन जुड़िया मामला माए तुरंत फैसला री जरूरत माथे जोर दीनो। पीठ कहो कि जमानत री अर्जियां माथे हुकम वाई दिन या आवता दिन सुनाया या अपलोड कर दिया चाहना चाहिए। अदालत कहो कि जमानत या सजा निलंबन रो हुकम सुनावन रा तुरंत पाछे जेल रा अहलकारा ने जानकारी देवनो जरूरी है। पीठ कहो कि विचाराधीन कैदी ने जमानत मिलताई वाई दिन या आवता दिन जेल नु छोड़ दियो जावनो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामला माए दायर अर्जियां माथे आज ही सुनवाई कीनी। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ कहो के ई मामला माए चूक री जिम्मेदारी तय करी जावनी चाहिए। आ अर्जियां माए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ओजू बनावण या वन हटावण रो हुकम देवण और वाणी ठोड़ एक मजबूत और स्वायत्त निकाय बनावण री मांग करी ची ही। ई मामला माए आगली सुनवाई जुलाई महीना रा दूजा सप्ताह माए करी जावेला।

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू ओजू ली जावन वाली नीट परीक्षा व्यवस्थित तरीकाओं बिना गलती करावन रो भरोसो दिरायो है। दूरदर्शन समाचार सागे बातचीत रे दौरान श्री प्रधान भरोसो दिरायो के सरकार विद्यार्थियों ने चिंता समझे है। वह कहो के परीक्षाओं जुड़ी चिंता बीच इम्तिहान बिना गलती करावन सारू जरूरी सगला जतन करया जा रहा है।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: पीएम सूर्य घर योजना रा तहत देश माए हाल ताई 40 लाख मकाना रे छत माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीन लगाती रिची है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वह कहो के आ योजना जनता ने बिजली रा ग्राहक री बजाय बिजली पैदा करण वाला बना रही है। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री प्रक्रिया 1 जून न शुरू भेला। प्रदेश में राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करो जावणु है। इसारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करया जा सकेला। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के दाखिल करीचिया नाम पाना री जांच 9 जून न करी जावेला। पर्चा 11 जून ताई पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून न सवारे 9 सिंजा 4 बजे ताई वोट पड़ेला और वही दिन सिंजा 5 बजे वोटां री गिनती करी जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए पचपदरा रिफाइनरी रा कामारी प्रगति रो जायजो लीनो। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रा आला अहलकारा सागे भी मीटिंग माए कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो के 1 जून कमिशनिंग रा काम शुरू कर दिया जावेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रदेश माए पेंशन लेवन वाला ज्यां लोगां रो हाल ताई सत्यापन नी करायो जा सक्यो है, वारो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो जा वेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज जयपुर माए न्यारी न्यारी योजना वारा काम रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए ए हुकम दीना। वह कहो के राज्य माए करीब 89 लाख लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जहाँ मायों 96% रो सत्यापन कर लियो चियो है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA री टीमा आज अजमेर और नीमराना हलका माए कुछ ठोड़ा छापा मारिया। NIA री न्यारी न्यारी टीमा अजमेर शहर और नीमराना रा कुछ हलका माए शंका वाली ठोड़ा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच कीनी और जरूरी पूछताछ करी जी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला माए पानी और आबो हवा ने बचावन सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावन रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर के नींदड़ माए पानी बचावन रा कामा रा तहत श्रमदान कीनो। इ मौके वे वन विभाग री ओर इको ट्रेल ट्रैक रो उद्घाटन ही कीनो। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ही मौजूद हा। सवाई माधोपुर जिला री अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा पीपल पूजन और पौधारोपण सागे परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। जैसलमेर जिला री भणियाणा पंचायत समिति में पीपल पूजन करी जियो और महिलावां मंगल गीतां सागे कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा हलका रा बिलावड़ी जोहड़ माए श्रमदान कर और पानी बचावन रो संदेश दियो चियो। इ मौके जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहो के इ अभियान रो मकसद जनता माए पानी और पर्यावरण ने बचावन सारू जाग जगावन सागे वारी भागीदारी बधावनु है।
2: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। इसमें मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज

0: प्रयास कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
1: अभियानरत सिरोही माए CSR कार्यशाला राखी जी इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावन जुड़िया काम और जनतारी भागीदारी रे बारा माए विगतवार चर्चा करी जी। चूरू और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माई जल चौपाल साफ सफाई रा अभियान तलावा और जोहड़ा नी साफ सफाई और पानी बचावन रे शपथ दिरावन रा कार्यक्रम राखी जिया। अरब मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का माए आंधी बारिश रे कारण पारो थोड़ो उतरणु तपन कम भी है। दोपहर पाछे कई हल्का माए तेज हवा चालन आंधी आवन और कठे कठे हल्की बारिश रा समाचार है। इन बीचे जैसलमेर और फलौदी समेत कई जिला माए आज ही तेज तावड़ो पड़ियो। मौसम केंद्र जयपुर आज आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी भेवन सागे। बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए कठे कठे तेज अंधड़ और बिरखा सागे कुछ जगह ओला पड़बा रा आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो कि काल ही राज्य रा घनखर हल्का माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन तेज आंधी अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
1: केंद्र सरकार सोशल मीडिया में चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वां वीडियो ने गलत बतायो है, जिनमें इटली री प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जुड़िया मनगढ़ंत दावा और ईरान अमेरिका बीच मध्यस्थता रा बारा में टिप्पणियां शामिल है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई रे मुजब डिजिटल रूप बदली जिया वीडियो ने AI बनाई चियो है। PIB री फैक्ट चेक इकाई रे मुजब श्री मोदी एडो कोई बयान नहीं दिनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसद भवन परिसर माए संसदीय कार्य मंत्रालय री हिंदी सलाहकार समिति री मीटिंग लीनी। इन दौरान सांसदा विधायका और आला अहलकारा सागे सरकारी कामकाज माए हिंदी ने असरदार तरीकाओं काम लेवन रे बारा माए चर्चा करी जी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिशन मौसम रातेत मौसम और कोहरारी निगरानी सारू देश री पहली एकीकृत विमानन प्रणाली स्काई कास्ट रो आज नई दिल्ली रा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माथे उद्घाटन किन्नो। ई मौके वे कहियो के ई नुआ सिस्टम रो मकसद हवाई अड्डा माथे मौसम री निगरानी और कोहरा रो सटीक अनुमान लगावण ने और मजबूत बनावणु है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कहो है कि भारत ने साल 2047 ताई दुनिया री अगाड़ी माली व्यवस्था मनावण रो लक्ष्य नीचला लेवल माथे हर नागरिक ने मजबूत करिया बगैर हासिल नहीं करियो जा सके है। वे आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय का न्यू सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। वे ग्राम लेवल माथे जनता ने मजबूत बनावण माथे जोर दिनो। श्री बघेल गांवाई हलका माए लोगों ने जिंदगी आसान बनावण सारू हर एक जना ताई सार्वजनिक सेवावां री पूर्ति तय करण बाबत कहो। वे कहो कि गांवा माए हर एक जना ताई सुशासन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण माए साझा सेवा केंद्र खास भूमिका निभाई है। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावन रा हुकम दीना। PM सूर्य घर योजना

0: ताईं देश रा 40 लाख घरां रे छतां माथे सूरज री रोशनियूं बिजली बनावण री मशीना लगाई छी। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवण वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। अर राज्य रा कुछ हलका माए आंधी बारिशों लू अर तपन थोड़ो आराम मिल्यो। आज अर काल घणखर थोड़ा आंधी बारिश अर ओला पड़बा सारू चेताई छियो। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल। आज के चौपाल में आप सुनेंगे गीतारो गजरो। आज की प्रस्तुति रहेगी रमेश जावरिया की।

राम राम सा कार्यक्रम गीतारो गजरो सुनणाळा सगळ्या परिवाराने आज भाई रामेश्वर का घणान घणा राम राम मोकळा मोकळा राम राम सा। क्योंकि आज देखा नहीं तो आज आपने सूरतगढ़ के आसपास भी बदलिया जगह है बे मंडरे है और आंधी लू या रली मिली सी चालन ला रही है कि थोड़ी सी ठंडी है कि थोड़ी सी ताती है, लेकिन आपने ई लू के टाइम का मां अपन ध्यान रखना जरूरी है सा। और सदा की भांति थाने हमेशा बताओ यहाँ कि पानी धानी की जिकी व्यवस्था है आपका कन्या रखो इन्हें बिना आता जानता और गांव गांव तरह करता टाइम भी है ना। और बिया भी केक रहने के आस लगाया मुर्धरा कणी आपने चंद्र सिंह बिरकाली जी आ बात लिखी है कि आस लगाया मुर्धरा देख रही दिन रात अरे भागी या तुम बादड़ी आई रुत बरसात। बिया तो अब जरूरत है ऐसा बरसात की क्योंकि कई दिन हो गया अपने बढ़त गमा बढ़ता ने और की ठंडक थोड़ी सी अपने हिवड़ा गमा बाप रहे की कालजा में बाप रहे तो और अपना जगह जी जिनावर है बेबी जगह है गर्मी हो एक त्रियाशु देखा नहीं तो बंगो भी अंत आ रहे है। तो अब थोड़ी सी बरसात जकी है राम जी महाराज कर दे तो कि ठंड वापर जाए और कि ठंड वापर जाए तो मौसम जो है वो थोड़ा सा सुहावनो हो जाए। पर आज गीतारो गजरो है और आज थारी फरमाइश पर आज आप सुन सक गीत भजन जका लोक गीत है बे और फरमाइश जकी है बात है अपने व्हाट्सएप पर भी मांडी है और मेल का माध्यम से भी मारते पुक्ति हो ला रही है और की हूँ कागजिया जका है बे पुगड़ा है बे भी ले रहे हूँ। तो सहसु पहली आप एक भजन सुन लिया अपना मनीराम और बांग साथियों गैडो और पछे थारा फरमाइशी जका नाम है बे बांचांगा सा लियो सुनो थियो भजन।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल सा मनीराम जी, बात तो बड़ी सियाणी की है। कसूरता हो ले त्यार जानो तो पड़ेगा सर, है ना। ही मो माया दुनियादारी छोड़ गए, लेकिन आपने क्या कह अठे ई धरा पर रहता था, ई जुग में रहता था अपन बड़ा भला भला और अच्छा अच्छा काम करना जरूरी है। सा आजकल के करे नहीं अंग्रेजी का माँ कह मानस की वैलिडिटी तो है ही कौन, है ना। तो भला काम करो, भलो को आओ। बड़ी शांति और सुनी बात कही है मनीराम जी। तो भजन सुनियो और आपने ती फरमाइश लिख कर भेजी है। ये भजन की सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावलीसू गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले अशोक येले और रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हूँ आपने ती फरमाइश मांडी है। PS नुआकर निर्मला नुआकर विशाल नुआकर मलकापुर से हूँ नारायण इंगले सोपान तायड़े आशीष मोहकर हाँ रलमिल के फरमाइश मांडी ऐसा और आप फरमाइश पुगी है आपने ती सूरतगढ़ से हूँ भूपेंद्र मिशन प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका इंग।

तवा अपने ती अपने ई भजन की फरमाइश मांडी है। गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ छू वेद मिडा अलका मिडा और गांव जोगीवाला श्री गंगानगर छू प्रेम सहारण मोनिका और मनीष सहारण और आ लिखे है कि मनीराम जी की आवाज में भजन बड़ो सुनो लगे हो। आपने ती फरमाइश लिखकर बेदी गांव घमंडिया सुरतगढ़ छू जगदीश ढूकिया प्रमीला ढूकिया ज्योति श्रीता तमन्ना सचिन विष्णु शिवम ढूकिया ईवा धरणिया और आ फरमाइश आपने ती पुग्गी है ग्राम पिपर लोड सरगाम छत्तीसगढ़ छू दीपेश वर्मा पुनो वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा मजनू का टीला छू अपने ती फरमाइश मांडर भेजी है कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा उमंग मलिक आकाश मलिक और माही मलिक। आ फरमाइश पुग्गी है चक 15 पीएस छू सर्वजीत सिंह जोशन सर्वजीत कौर जोशन गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया छू आदर्श पाल जोशन वैंकूवर कनाडा छू रोबिन सिंह जोशन और चक 78 एलएनपी छू डॉक्टर विचित्र सिंह और अंगो नन्नो सो पोतो है अरविंद सिंह। तो आ रल मिल के फरमाइश मंडिया सा आ फरमाइश पुग्गी है फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चुरू राजस्थान छू संदीप सिंह सोनगरा प्राची सोनगरा सोमल सोनगरा कार्तिक सोनगरा और सगड़ो परिवार। गांधीनगर गुजरात छू सुरेश राठौड़ मंजुला राठौड़ विशाल और निशा भी आपने थी फरमाइश मांड दी और आप फरमाइश पुग्गिया गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब छू ओम बगड़िया क्रियांश बगड़िया रजत बेबी और ग्रीमा बगड़िया। गांव अरायण छू डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल बिमला सोनू जयपाल ममता जयपाल दिशा मोक्ष सुशांत जयपाल विक्रम जयपाल आम भी रल मिल के फरमाइश मांड दिशा और आप फरमाइश पुग्गी आपने थी लिखी है नई दिल्ली मोती नगर छू और आ नाम लिखियो है आपको मानसी गौरव अनिल कविता अरोड़ा। पटेल नगर मलोट पंजाब छू डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरजू जाजोरिया और गुड्डू भी आपने थी फरमाइश मान दी और आ फरमाइश पुगी है आपने कन दादरी गेट भिवानी छू कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा और कपिल मेहरा कुणाल मेहरा। अब थाने एक गीत और सुना दें सा लियो सुनो सा

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: बिल्कुल सर, थाने एक रूण नाटक तो गीत सुनाए और इन्हीं फरमाइश की ही आपने ती पुगी है गोविंदपुरा सिकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और आप फरमाइश पुगी है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफर आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, असमा परी राबिया मंसशाह, आशु अहमद फूल वाले और सगड़ो परिवार। इन गीत की ही फरमाइश आपने ती मांडी है सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रीतिशा संधु और मैक्स और हाँ कट्ठे से लिखी है वो आप उसको अतोपत्तो है वो मांडियो को निशा। आप फरमाइश पुग्गी है 82 RB से और नितवंद्या श्रोता है चेतनराम सारसवा, नौरंग राम सारसवा, प्रदीप सारसवा, ज्योति सारसवा, ममता सारसवा, नानू देवी सारसवा, शिवप्रकाश खाती, सोन जांगिड़, धनराज भंबू, सुनील डाल, प्रवीण सरावगी, नरसी सिमर हाँ रल मिल के फरमाइश मांडी है और आ फरमाइश पुग्गी अपने तई कनेरा मोहला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका वंश बत्ता और गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम करोड़ीवाल। एक गीत की फरमाइश बागपत उत्तर प्रदेश से अपने तई पुगती हुई है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और आ फरमाइश पुग्गी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, केथल से अपने डॉक्टर अमनदीप सिंह और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टू बजाज भी आपने दी फरमाइश मांड दी सा। आ फरमाइश पुग्गी है अनारकली बाजार जगराम से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और गांव नथाणा पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता भी आपने दी फरमाइश मांड दी सा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा भी फरमाइश मांडी है और ये गीत की ही फरमाइश आपने ती पुगती हुई है डोंडी लुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डोली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और अंग सागा है मास्टर अल कबीर। गांव खोकरावाड़ी श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और सगुन बारासा भी आपने दी फरमाइश मार दी और आप फरमाइश पुगी है मंडी गोलवाड़ा से बिरजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान और राजपुरा से आपने ती फरमाइश लिखकर भेजी।

हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, जगशीर सिंह और धर्मवीर झोरड़, खुशीराम रणवा, बिरजलाल, पालाराम हनुमान, खेरवा कान्हाराम, मोहनलाल महला, विजय झांझड़िया, आम भी फरमाइश मांडी, और आम मांडी है गांव गोविंदपुरा 18 GG श्री गंगानगर सिंह, और आ फरमाइश पुग्गी है गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर सिंह, सोलाल बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत, और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन सिंह, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और सगलो डागला परिवार, थाने सगला नायक गीत भजन सुना दिया सा, लो सुनो सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल सा थने भजन सुनायो आपने ती फरमाइश लिखकर भेजी है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ और आ फरमाइश पुगी है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी सहद्रा दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना मस्किन आशीष राजा चैतन्य मस्किन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान और रल मिल के फरमाइश मांडी ऐसा आ फरमाइश पुगी है बठिंडा रोड मंडी डबवाली शिव राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग और तानिया नारंग गांव बनवाला हनुमंता फाजिलका पंजाब शिव विनोद मायल सीमा लक्षिता यशिका औरंगा माता जी है विद्या देवी और सगड़ो परिवार गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा शिव प्रताप जी नगल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया और वड़िंगखेड़ा पंजाब शिव मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा भी फरमाइश मार दी सा और आप फरमाइश पुगी है सदर बाजार कुरावली शिव अनिल कुमार वर्मा माया देवी वर्मा राहुल कुमार वर्मा विनीत कुमार वर्मा सोनम वर्मा गोविंदपुरा सिक्कर से दतार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत अपने दोबारा फरमाइश मार दी सा और आप फरमाइश पुगी है अपने ती लिखने वाला है GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब शिव और लिखी है मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना अफिया सना समा हिना शकीला जशमीन राजिया सुल्तान और अख्तर अंसारी सूरज मोहम्मद जावेद अंसारी आ रण मिल गए फरमाइश मांडी ऐसा और आ फरमाइश पुग्गी है अनूपपुर मध्य प्रदेश जय मंत्री केवट अंजलि केवट रुद्राणी केवट कृष्णा केवट और संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल शाहनी पिंगवाला चौक गुरैया जलंधर से आपने दी फरमाइश मांड दी हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान जिशान खान भी फरमाइश मांडी ऐसा और आप फरमाइश पुगी है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू अंगसागे है और आ फरमाइश चक 14 PSB से कुलदीप सिंह राजविंदर कौर संदीप सिंह जसकरण सिंह हरदीप सिंह मनराज विरक आ भी फरमाइश मांडी ऐसा आ फरमाइश पुगी ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबी राही मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से और अगली फरमाइश अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति बिमला प्रजापति राजाराम प्रजापति मोनू प्रजापति भी फरमाइश मारती सा बोला कॉलोनी घरोड़ा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान कांता रानी गुंजन साहिल वाणी जयजान आम भी फरमाइश मांडी ऐसा और आ फरमाइश पुगी है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय और दुबीहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी राय और प्रांजल राय मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सीता सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया सजदा रानी हिना कोशर और फरमाइश पुगी है नगरोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी आ फरमाइश पुगी है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुश नसीब अब्दुल हक डावर जियालु हक डावर और मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे भटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी भी अंश आ गए हैं और आ फरमाइश पुगी है अपना ती लिखने वाला है मध्य प्रदेश से दशरथ सेन आ फरमाइश मंडी ऐसा अगली फरमाइश अमन वर्मा रमन वर्मा दिव्यांश वर्मा मदन लाल वर्मा कीर्ति वर्मा सिदक वर्मा और सगड़ो परिवार आ फरमाइश मंडी है बुर्ज हनुमानगढ़ से और अगली फरमाइश गांव न्योलापुरा न्योला रामपुरा से सुरेंद्र डिडन सिकला डिडन और अनवर संदीप अक्कू बावरा गायत्री मोली बावरा आ रल मिल गई फरमाइश मांडती सा अलीका तहसील डब्वाली से रूप सिंह लखोत्रा करमजीत लखोत्रा सरबजीत लखोत्रा रानू रानी सोनू रजनी और डब्वाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार और कुलदीप गांधी भी फरमाइश मांड दी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़ ममता जाखड़ प्रिया नैना जाखड़ हिमानी जाखड़ और शिवम जाखड़ सगड़ा ने रेड़ी मिली फरमाइश पर अपा एक गीत सुना दें सा लो सुनो सा

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में।
2: बिल्कुल सर, थाने गीत सुनाए और आपने फरमाइश पुगी है मुकलावा बॉर्डर एरिया स्यू श्रोता संघ अपना आकाशवाणी श्रोता संघ बना रखे है राइसनगर स्यू मदन ब्रोड, मंजू बाला, प्रीति ब्रोड, दिव्या ब्रोड, हितेश ब्रोड, कामना ब्रोड, लुभानी ब्रोड, आरती ब्रोड, अजय पेंटर, मुकेश पेंटर, राजू पेंटर, अंगा मऊ बपू है, हनुमान ब्रोड, इमृति देवी और सगड़ो परिवार। आप फरमाइश अपने ती पुगी है लिखने वाला है दोबारा फरमाइश मांडी है सर है ना अपने मेल का माध्यम से रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा भी अपने दी फरमाइश मान दी और आप फरमाइश पुगी है शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अगली फरमाइश आपने ती लिखकर भेजी है राइसनगर से और लिखी है सोनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, शिव प्रकाश, सुनील जांगिड़, प्रवीण कुमार सरावगी, नरसी कुमार धनराज जी भंबू और साबराम स्वामी आ रण मिल गए फरमाइश मांडी ऐसा। और अगली फरमाइश ढाणी लाल खां शूँ, जावेद खान, रमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां, मुख राम, आरिफ खां, ईयान खान, अरशद खान और अरमान खान आ भी रण मिल गए फरमाइश मांड दी। और गांव खरकड़ा चौबीसी शूँ, गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, अंशिका बो, तमन्ना कांगड़ा और लोकू कलोनी लोहारू हरियाणा से बिलू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा निहारिका, योगेंद्र चिंडालिया, नरेंद्र कुमार भी रण मिल गए फरमाइश मांड दी सा। गांव बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ चूँ बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, बंटी बबली वर्मा भी फरमाइश मांड दी। और आप फरमाइश पुग गया गांव गोविंदगढ़ माजीवाड़ा श्री कर्णपुर चूँ राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जिनू मीनू, शिव शेट्टी, कर्णपुरी पाल मिस्त्री, कर्णपुरी स्माइल टुटेजा, पवन गुज्जर। और गाँव 34 STG पिलीबंगा चूँ प्रेमी बिशनलाल मेहरा, अमन समीर, रितु मेहरा और चहलकला पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर, अंबा चहल भी फरमाइश मांडती सा। और अगली फरमाइश आपने ती पुगती हुई है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से और लिखी है हीरामणि वर्मा।

लक्ष्मणी वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। और अगला गीत की फरमाइश अपने रूपाणा बिश्नोईया सिरसा हरियाणा से हूँ, सूरजमल मास्टर, पाल टेलर, भीम टेलर, चिराग, दुर्गा शक्ति, रल मिल के फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पूर्ति हुई है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से हूँ, अहमद भाई फूल वाले, दुखना सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, रल मिल के फरमाइश मान दी ऐसा ना दोबारा शायद फरमाइश मान दे। थाने सगला ने एक गीत सुना दिया, बिछड़ो लो सुनो सा।

बिल्कुल सर, आपने इन गीत की ही फरमाइश पुगी है। चक पांच एमडी पतरोड़ा, शिव मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और सुनील जनागल। और आ फरमाइश डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय राधिका गजबीय भी आपने ती फरमाइश मान दी। खिनाणिया कोलायत से प्रभु कड़ेला, रतन युवराज, खुशबू और कनिष्का कड़ेला भी फरमाइश मान दी। वणिखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा दोबारा फरमाइश मान दी सा। और आप फरमाइश इन गीत की पुगी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तड़, कृष्णा मुकेश तड़, रामचंद्र तड़, कपिल देव और कांता चौधरी, रलमिल की फरमाइश मान दी सा। लो सुनो साथियों गीत।

बिल्कुल सर, आपने तो फरमाइश के तौर पर पुगी है आ फरमाइश चंडीगढ़ से सतीश नेजा बिमला नेजा, और अगली फरमाइश गांव नलोई तहसील शिवानी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा कार्तिक व वेदांश जांगड़ा। अगली फरमाइश आपने तो जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े, गांव पंचायत बिठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा उमेश मिथिलेश वर्मा, और उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी गोस्वामी और शिवन्या, चक छः एम एस आर अनूपगढ़ से रमेश कुमार समीर अंशुमन पारुल आ भी फरमाइश मान दिशा। और अगली फरमाइश पुगी है एम एल बी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या खुराना आरव खुराना मेघा आशीष अनुज छोटू और एस के पप्पी। अगली फरमाइश आपने ती लिखत भेजी है आसाम से और लिखी है हितेंद्र दास, और खारियां जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह देवेंद्र राजपाल अभिषेक योगेश पूजा अर्जुन नव्य बिजारणिया भी फरमाइश मान दी, और आप फरमाइश पुगिया भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान।

छिपा और पूजा परिहार। अगली फरमाइश, मरहरा दरवाजा एटा चूँ नबी हसन आवासी सहनाज आवासी नावेद हसन आवासी रसीद वारसी सुहेल हसन आवासी अनम आवासी और रशफ आवासी। अगली फरमाइश, आपने ती लिखर भेजिए सा आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मेंडी शर्मा सौरव शर्मा साइना शर्मा और निवान शर्मा। सादुल शहर से राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड भी आपने ती फरमाइश मान दी सा और आप फरमाइश पुगी है नीमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जितेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर व करमजीत कौर और ढाणी लालखा से जावेद खां अपने ती दोबारा फरमाइश मांडी है सैद अरमान खां इमरान खां सीमा बानो विनोद खां मुखराम रल मिलगी दूसर मांडी है सर फरमाइश है ना। पद्मा टोकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश में सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विनी शाह मंगलाबेन शाह राजेंद्र शाह और सांगली जिला केजत शहर से अल्ताफ हुजरे शेफुल्ला सबाहत कीर्ति हुजरे और रेहान शेख बिल्लू सूद सुनीता सूद आशीष सूद चांदनी और विश्व सूद आपने केसरी सिंह पुरसू फरमाइश मान दी सा और आप फरमाइश पुगी है अपने ते गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश यदव कड़वासरा कुंदन जाखड़ लीलाधर स्वामी कृष्ण मायल किडूराम जोया हनुमान सारण और सुनील पाईवाल शर्मा। अगली फरमाइश आपने ती लिखी है जलंधर सिटी पंजाब से सोनू रवि राज और गुलशन और लक्की सगला नेक चालता चालता छिकड़ लो गीत सुना दें सा लो सुनो सा।

बिल्कुल सर, आपने तो कागज के तौर पर फरमाइश लिखत भेजी व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही आ रलमिल की फरमाइश मान ली। ऐसा लो सुनो थे पियो गीत।

बिल्कुल सा कार्यक्रम जो है वो छिकड़ला पड़ाव पर आ गयो और तेज धमकतो तावड़ो चमके जाने साण। आकनी बात कही है कि तेज धमकतो तावड़ो चमके।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो,
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो

अंजाना, क्षमा करें भाभी, फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है खुद गर्ज। आवाजें नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज की हैं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के ठीक 8 बजे हैं और ये वक्त होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से कार्यक्रम का। लीजिए सुनते हैं

चलो ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, चार दिनों की है जिंदगानी तो आ मेरी

आपने बड़ी ही मधुर और रोमांटिक आवाज़ को सुना। ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और आज की फिल्म का नाम है अनजाना। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के सभी गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और नगमा।

ये दिल लेके वापिस दिया नहीं जाए, दिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। बड़ी ही मधुर आवाजें आपने सुनी, मोहम्मद रफी का साथ दे रही थी सुमन कल्याणपुर। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आज आप सुन रहे हैं फिल्म अनजाना के कुछ गीत।

रस्ते में बहार मिल जाए, शायद कोई यार मिल जाए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं एम के प्रोडक्शन की फिल्म अनजाना के कुछ गीत। इसके निर्माता और निर्देशक मोहन कुमार हैं और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं हैं वो हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों को आपने सुना। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको कहा था कि इस गीत के बाद बताएंगे इस फिल्म में कौन कौन से अभिनेता की भूमिका रही। इसमें राजेंद्र कुमार, बबीता प्राण और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे, और इनके साथ साथ नजीमा, सुंदर, टुनटुन, मोहन, चोटी, निरुपमा रॉय, मधु आप्टे, जूनियर महमूद और हरी शिव देसानी की भूमिकाएं भी बड़ी ही महत्वपूर्ण रही। ये फिल्म 25 दिसंबर 1969 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के सभी गीत बड़े ही मधुर थे और जो आज तक सुने जा रहे हैं। गीतों को लिखा था आनंद।

एक ही फिल्म से। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आज की फिल्म थी अनजाना। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी व अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान बनाया। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। भारत ने इंग्लैंड को पहले महिला T20 क्रिकेट में हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और हॉकी अंडर 18 एशिया कप में कप्तान केतन की हैट्रिक, भारत ने कजाकिस्तान को हराया।

0: बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान बनाया। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। भारत ने इंग्लैंड को पहले महिला T20 क्रिकेट में हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और हॉकी अंडर 18 एशिया कप में कप्तान केतन की हैट्रिक, भारत ने कजाकिस्तान को हराया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई अंडर 20 से, जहां एथलीट्स ने कई पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। हांगकांग में पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप में के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने इस जीत के साथ नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। 19 वर्षीय पूजा ने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1.93 मीटर की कूद लगाकर सहाना कुमारी का 14 साल पुराना 1.92 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं इससे पहले निपम ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण को यादगार बनाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में स्वर्ण, वहीं साधना रवि ने महिलाओं के ट्रिपल जंप इवेंट में रजत पदक जीता।
1: पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में नितिन गुप्ता ने पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि चीनी ताइपे के शेंग किन लो दूसरे और जापान की चिहिरो ओबाता तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता में ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बधाई देते हुए कहा है कि नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में शानदार स्वर्ण के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 18 साल के नितिन ने शनिवार को भी बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस वॉक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रतियोगिता में उन्होंने भारत के 40 साल के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक और 2 बार ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके संदीप कुमार को रोमांचक मुकाबले में हराया था। वहीं महिलाओं के ट्रिपल जंप इवेंट में साधना ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल किया। चीन की यिंकिंग जी ने स्वर्ण, जबकि कजाकिस्तान की मारिया शिचपाचेवा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 2024 में दुबई में हुए एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में भारत 7 स्वर्ण सहित 29 पदकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं अभी ताज़ा जानकारी हमें मिली है महिला डिस्कस थ्रो में, अमनंत कंबोज ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं पुरुष डेक्थलॉन में राहुल ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। और नितिन ने हाल ही में हुए नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस वॉक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रतियोगिता में उन्होंने भारत के 40 वर्षीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर और 2 बार के ओलंपियन संदीप कुमार को एक रोमांचक मुकाबले में हराया था। अब सीधे रुख कर लेते हैं न्यू चंडीगढ़ की ओर, जहां पर आईपीएल के क्वालिफायर 2 का रोमांचक मुकाबला जारी है। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। यशस्वी जायसवाल इस मैच में 1 रन पर आउट हुए। ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर कगिसो रवाडा का शिकार बने। वहीं रविंद्र जडेजा 34 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। रियान पराग कप्तान राजस्थान के, उन्होंने 6 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के लगाकर 11 रन बनाए। और वैभव सूर्यवंशी 26 गेंद पर 47 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद है। अब बात महिला क्रिकेट की कर लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को पहले महिला T20 क्रिकेट में 38 रन से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। आइए सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
2: भारत की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। कप्तान स्मृति मंधाना पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं। इसके बाद शेफाली वर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर लॉरेन बेल का शिकार बनी। यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्ज ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए

0: 126 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। भाटिया ने 54 रन और जेमिमा ने ताबड़तोड़ 69 रन की पारी खेली। इसके बाद भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन दीप्ति शर्मा ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 13 गेंद पर 22 रनों का अहम योगदान दिया। भारत ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 188 रन बनाए। लॉरेन बेल ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड को 18 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लगा। सोफिया 16 रन बनाकर क्रांति गौड़ का शिकार बनी। क्रांति ने एलिस कैप्सी के रूप में भारत को दूसरी सफलता दिलाई। 2 विकेट जल्दी खोने के बाद हीदर नाइट और एमी जोन्स ने इंग्लैंड की पारी को संभाला। अंग्रेज टीम को 101 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। एमी ने 67 रन और नाइट ने 21 रन बनाए। एमी के आउट होते ही इंग्लैंड की पारी बिखर गई और पूरी टीम 150 रन पर सिमट गई। नंदनी शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट, क्रांति ने 2, श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट लिए। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैंट।
1: तो विश्व कप से पहले भारतीय टीम अपना टीम कॉम्बिनेशन को सही करना चाहेगी और पहले मुकाबले में भारत ने अच्छा प्रदर्शन कर अच्छा खेल भी दिखाया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस में उलटफेर का दौर जारी है। पुरुष सिंगल्स में राफेल खोलिंगन ने बेन शेल्टन को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं यानिक सिनर भी जुआन मैनुअल सेरुंडोलो से हारकर बाहर हो गए। आइए जानते हैं खिलाड़ियों के रोमांचक प्रदर्शन के बारे में।
2: राफेल कोलिग्नन ने बेन शेल्टन को सीधे सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली। कोलिग्नन की इस जीत के साथ टॉप हाफ ड्रॉ में अब सिर्फ एक टॉप 8 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ही शेष है। 2 घंटे 3 मिनट की इस जीत में कोलिग्नन ने 49 में से 43 फर्स्ट सर्व पॉइंट हासिल किए और उन्हें ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। दुनिया के 62वें नंबर के खिलाड़ी राफेल कोलिग्नन पिछले 13 सालों से पहले ऐसे बेल्जियन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी बड़े टूर्नामेंट में टॉप 5 सीट खिलाड़ी को हराया है। इससे पहले यह कारनामा 13 साल पहले कोच डॉर्सिस ने विंबलडन में राफेल नडाल को हरा कर किया था। पिछले साल सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेविस कप मुकाबले में भी राफेल कोलिग्नन ने बड़ा उलटफेर किया था जब उन्होंने एलेक्स डी मिनोर को हरा दिया था। ये उनकी दूसरी बार किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ जीत थी। कोलिग्नन का अगला मुकाबला इटली के माटेओ अर्नाल्डी से होगा जिन्होंने 2021 में फाइनल में पहुंचने वाले स्टेफानोस सित्सिपास को 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 से हराया। दूसरे मुकाबलों में ऑगर अलियासिमे ने अर्जेंटीना के रोमन एंड्रेस बुरुचागा को 4-6, 6-0, 7-5, 6-1 से हराया और कोबोली ने वू यिबिंग को 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी। 2021 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले माटेओ बेरेटिनी ने 22वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी आर्थर रिंडरक्नेच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। अमेरिका के खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा ने फ्रांस के लुका वैन एश को 6-7, 6-4, 5-7, 6-1, 6-3 से हराते हुए अगले दौर में जगह बनाई। वहीं कल हुए एक और बड़े उलटफेर में 56वीं रैंकिंग पर काबिज जुआन मैनुअल सेरुंडोलो से यानिक सिनर को 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 से हार का सामना करना पड़ा। फरवरी से सिनर ने लगातार 30 मैचों में जीत दर्ज की थी और उन्हें इस प्रतियोगिता को जीतने वाले खिलाड़ियों में प्रबल दावेदार माना जा रहा था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: भारतीय टेनिस प्रशंसकों की निगाहें आज होने वाली भारतीय मुकाबलों पर होंगी जहां एन बालाजी और यूकी भांबरी पुरुष डबल्स में अपने अपने मुकाबले खेलते नजर आएंगे। वहीं स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का भी मुकाबला जारी है। सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर जहां पर आज भारतीय खिलाड़ियों का दिन मिला जुला रहा। कुछ खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश किया तो कुछ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को 19-21, 21-17, 21-13 से हराया। सेमीफाइनल में कल भारतीय जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया के SJCO और WH किम से होगा। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की विश्व नंबर 4 जोड़ी चेन तांग जी और तोह ई वेई से वॉकओवर मिलने पर अगले दौर में प्रवेश किया। तो ई वेई के घुटने में चोट लगने के कारण मलेशियाई जोड़ी को मैच के बीच से ही हटना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन फैंस को अनुभवी पीवी सिंधु और शानदार फॉर्म में चल रहे लक्ष्य से भी उम्मीदें थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले हारकर

0: प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया। कप्तान केतन कुशवाहा की हैट्रिक की मदद से भारतीय टीम ने पहले पूल ए के मुकाबले में कल कजाकिस्तान को 13-0 से मात दी।
1: कप्तान केतन कुशवाहा ने 3 गोल करके भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, जबकि प्रहलाद राजभर, आशीष तानी पूर्ति, अंश बहुता और शाहरुख अली ने 2-2 गोल किए। भारत ने मैच की शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा। दूसरी ओर कजाकिस्तान की टीम लगातार दबाव में नजर आई। भारत के लिए शाहरुख अली ने 12वें मिनट में सर्कल के अंदर से बेहतरीन गोल किया। इसके सिर्फ 2 मिनट बाद प्रहलाद राजभर ने एक और गोल करके भारत के बढ़त को 2 गुना कर दिया। पहले क्वार्टर के खत्म होने तक भारतीय टीम ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी। दूसरे क्वार्टर में भी गोल होते रहे। कैप्टन कुशवाहा ने 18वें मिनट में गोल किया, जबकि गाजी खान ने 20वें मिनट में 4th गोल करके बढ़त में इजाफा किया। शाहरुख ने शानदार फिनिश के साथ अपने 2 गोल पूरे किए और पूर्ति ने 30वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। इसे भारत ने हाफ टाइम तक 6-0 की बड़ी बढ़त बना ली थी। तीसरे क्वार्टर में भारत के 5 में से 4 गोल पेनाल्टी कॉर्नर से आए। बहुता और पूर्ति ने 2 गोल किए। क्वार्टर के आखिरी मिनट में कुशवाहा ने एक पेनाल्टी कॉर्नर सहित 2 गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। भारत ने तीसरा क्वार्टर 11-0 की बढ़त के साथ खत्म किया। भारतीय टीम ने आखिरी क्वार्टर में भी दबाव बनाए रखा और शानदार जीत दर्ज की। आकाशदीप ने 51वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। भारत का अगला मैच 31 मई को मेजबान जापान से होगा, जहां टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को बधाई दी है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में पहलवानों के शानदार प्रदर्शन और उनके खेल कौशल की सराहना की। श्री मोदी ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। श्री रिजिजू ने भारतीय कुश्ती टीम की शानदार सफलता पर खुशी जताते हुए इसे देश के जगत के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रतियोगिता के पुरुषों की फ्री स्टाइल और महिलाओं की कुश्ती टीमों ने टीम में खिताब जीते। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने 9 पदक हासिल किए, जिनमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया उस युवा शतरंज सितारे के बारे में बात करने की, जिन्होंने अपनी सोच, साहस और अद्भुत शतरंज खेल से पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। डी गुकेश। आज ही के दिन जन्मे तमिलनाडु की धरती से निकलकर विश्व मंच तक पहुंचने वाले गुकेश ने यह साबित कर दिया कि अपने सपने उम्र नहीं हौसलों से पूरे होते हैं। उन्होंने कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया और फिर अपने शानदार खेल, शांत स्वभाव और अद्भुत रणनीति से दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को मात दी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने भारत का तिरंगा गर्व से ऊंचा लहराया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। आज उनके जन्मदिन पर हम यही कामना करते हैं कि वे आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयां छुए, नए कीर्तिमान स्थापित करें और देश का नाम रोशन करते रहें। स्पोर्ट्स कैन की टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्वालिफायर 2 के मुकाबले की ओर, जहां राजस्थान रॉयल्स ने 13वें ओवर में 5 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 49 रन बनाकर टीम को अकेले अपने दम पर संभाल रहे हैं। वहीं जोफ्रा आर्चर 7 रन बनाकर आउट हो गए हैं। मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और कगिसो रबाडा ने भी 1 विकेट लिया है। जशन होल्डर 2 विकेट लेकर 11 रन दिया है उन्होंने 3 ओवर में। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।

0: सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के इस सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गाई हुई कुछ गजलें। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम की एक और गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संधि। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम हेलो मिट्टी दी खुशबू। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं नवीन सिसोदिया और आज की प्रस्तुति है दुर्गा राम की। लीजिए सुनिए ये कार्यक्रम।

0: हेलो मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम।
1: सत श्रीकाल जी, गुरकरण जी।
0: सत श्रीकाल दर्शन लोड जी।
1: दर्शन लोड वालों जी सारे श्रोतियों नूं प्यार भरी सत श्रीकाल
0: जी। सत श्रीकाल लोड साहब, पहुंच रही है तुहाडी पूरे सारे आकाशवाणी परिवार की तरफों भी तुहानूं भी बहुत बहुत सत श्रीकाल नमस्कार।
1: छोटियां जिहियां मुबारकां मेरी अपनी पोती
0: जी
1: सैकंड आई है।
0: केड़ी क्लास चो?
1: 11वीं चो जी।
0: अच्छा 11वीं च। की नाम पोती दा?
1: मीनाक्षी लोट।
0: हाँ मीनाक्षी लोट है ना। हाँ तुहाडे खत विच मीनाक्षी का नाम भी आता हुंदा वा जी। मीनाक्षी नूं तुहाडे पूरे परिवार नूं बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत वधाइयां जी।
1: मेहरबानी जी, मेहरबानी।
0: ते लोट साहब, तुहाडे खत दे विच बहुत वधिया शेरो शायरी लिखी हुंदी हुंदी आ, तुसीं आप लिखदे हो?
1: हाँ जी।
0: वाह जी वाह, बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। ते अज फिर सारे सुनन वालियां नूं कोई वधिया जिहा कोई शेर भी सुना दो फिर।
1: बस इन्ना दस जा यार मेरे
0: जी,
1: बस इन्ना दस जा यार मेरे, तू गैर क्यों सानू बना दिता।
0: हा हा हा,
1: असी खुशियां मंगियां सी तेरे लिए,

0: हेलो मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम। हाँ
1: जी सत श्रीकाल भाई,
0: सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
1: मैं मलकीत सिंह पड़ियाणा जी, भाई मेरा पिंड है पड़ियाणा जी। हाँ
0: अच्छा,
1: जी
0: ते मलकीत जी,
1: हाँ जी,
0: प्रोग्राम सुनदे नूं तुहानूं किन्ना टाइम हो गया?
1: प्रोग्राम तो बहुत चिर हो गया जी, पर मैनूं फोन मिलने नूं 6 महीने हो गए जी, 7 महीने।
0: अज फिर मिल गया ना दोबारे? फिर
1: हाँ जी अज मिल गया जी, चलो
0: वधाइयां होण फिर तुहानूं बहुत
1: जनाब
0: बहुत। हाँ
1: थोनू बहुत वधाई होवे जी।
0: जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: हाँ
0: ते
1: जी
0: मलकीत जी,
1: हाँ जी,
0: एक तुसीं दस दो, कलाकार कहड़ा सुनाइए तुहानूं अज?
1: मैं हाकम सूफी का सुनना
0: जी
1: जी।
0: जरूर सुनावांगे, हाकम सूफी दी आवाज़ विच। तुहाडा जिहड़ा पिंड आ घुड़ियाणा,
1: हाँ जी,
0: इहदा नाम घुड़ियाणा कैवें पिया, कोई पता हैगा तुहानूं?
1: पिंड दा जी मैनूं इन्ना भी पता नहीं, पिंड घड़ियाणा कह दिंदे जी, पुराना पिंड है ये बहुत
0: ते
1: चिर दा।
0: अच्छा, पिंड दी कोई खासियत?
1: खास जी तो वैसे एक समाध बनी है बाबे वाले जी, उत्थे मत्था टेकदे आ लोग जी।
0: जी जी
1: हाँ जी, परिवार सुनदे जी प्रोग्राम थोड़ा जी।
0: हाँ जी हाँ, तुहाडे खातों दे हुंदे आ, असीं पढ़दे हुंदे आ। मलकीत
1: जी
0: जी, तुहाडे नाल होर प्रोग्राम कौन कौन सुनदे हुंदे आ?
1: सारे घर दे सुनदे है जी, मैं
0: न...
1: जी मनजीत कौर सुनदी है जी, दीपेंद्र सुनदा है जी, ते
0: जी
1: मेरा पोता गुरशांत सुनदा है जी, होर सारे घर दे सुनदे हैं, बल्कि परिवार सारा सुनदे है।
0: चलो
1: हाँ जी
0: सुणिए सब हाकम सूफी दी आवाज़ विच गीत।
1: हाँ जी, सुना दे थोड़ा बहुत धन्यवाद जी।

0: हेलो मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम।
1: सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। कौन बोलते हो जी?
1: सर जी श्याम लाल बोल रहा मंडी के सिंहपुर तो।
0: और श्याम लाल जी, की हाल आ?
1: सर जी बहुत ही बढ़िया है जी।
0: अच्छा, और गर्मी किन्नी का तुहाडे इधर?
1: सर जी गर्मी तो पूछो ना, बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: को मीह पानी?
1: मैं पानी बिल्कुल नहीं है जी।
0: अच्छा, नहीं पे अपने ना। चलो आऊगा
1: हाँ
0: जी,
1: जी हाँ जी
0: मानसून आऊगा, हो सकदा उस तो पहला अपने बरसात आ जावे।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी
0: जी जी जी जी ते श्याम जी,
1: हाँ जी।
0: मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम सुनदे हो, तुहानू किन्ना क टाइम हो गया जी?
1: सर जी असी तो जदों की समझ पई है उदों तक सुनी आने हैं।
0: कितना दा लगदा प्रोग्राम?
1: प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगता है सर जी, ताई फोन मिलाने हैं।
0: जी जी जी नहीं ओदा तुहाडा प्यार आ साहब, मोहब्बत अपनी सारिया दी।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी श्याम
1: हाँ
0: जी,
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: एक तुसी दसो तुहाडी जिहड़ी रुचि ओह कहदे विच हैगी आ?
1: मैं तो जी सवेरे तो शाम रेडियो ठीक करता, मैं रेडियो की रुचि है मेरी तो बहुत ज्यादा जी।
0: जी जी अज किन्ने क रेडियो सही करदे ने तुसी
1: सर जी इस तो पहला मैं दो रेडियो ठीक कर चुके हैं।
0: अज?
1: हाँ जी हूँ रेडियो ठीक करते करते फोन मिलाया सी।
0: वाह जी वाह जी वाह, बहुत वधिया गल। ते अज कलाकार केड़ा सुनाइए तुहानू फिर,
1: सर जी हरजीत हरमन जी का की सुनना है।
0: ते तुहाडे नाल प्रोग्राम होर कौन कौन सुनदे हुंदे आ, नाम भी दस दो सारिआं दे।
1: सर जी साडे नाल राजपाल है, संदीप कुमार है, जयपाल है, चिमन लाल है, माड़ू राम ते गेजा सिंह जी है जी।
0: जी शुक्रिया साहब श्याम जी।

0: हेलो मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम,
1: हेलो मिट्टी दी खुशबू,
0: कौन बोलते हो जी?
1: गुरबचन बोल रहे हैं जी, किधर
0: गुरबचन सिंह
1: तो?
0: बेदल,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: एक पी अनूपगढ़ तो।
1: एक पी अनुपगढ़।
0: वाह जी वाह, बहुत वक्त बाद तुहाडा फोन मिलिया साहब अज।
1: बहुत टाइम हो गया।
0: बेदल साहब, एक तुसी दसो, प्रोग्राम सुनदे हन तुहानू किन्ना टाइम हो गया?
1: प्रोग्राम 12 जुलाई 1996 तो सुनी जाने हैं जी।
0: वाह जी वाह, प्रोग्राम दे जन्म तो ही है ना?
1: जी, जन्म तो ही।
0: वाह जी वाह, बहुत वड्डी गल साहब, बहुत वड्डी गल।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: ते
1: जी
0: बेदल साहब, तुहाडे खतां विच बहुत वधिया शेर लिखे हुंदे सी, है ना?
1: हाँ जी हाँ जी
0: ते तुहाडी फिर रुचि लिखण दी होणी।
1: हाँ जी हाँ जी, थोड़ा बहुत कर ली रहा शेर। हाँ
0: जी, ते अज असी
1: जी
0: भी फिर कुछ सुनना चाहवांगे तुहाडे कोलों।
1: हाँ जी हाँ जी, आ गईयां हवावां ते पूरे वलों ठंडियां,
0: जी
1: दिल दियां गल्लां जदों यारां नाल वंडियां,
0: आहा,
1: केस दी दोपहर सानूं कोह वांगू लगदी,
0: हाँ जी
1: यार साडे नाल परवाह नहीं हो जगदी, यार साडे नाल परवाह।
0: वाह जी वाह, वाह बेदल साहब, बहुत वधिया बहुत वधिया।
1: और
0: तुहाडे नाल होर प्रोग्राम कौन कौन सुनते हुंदे आ
1: मेरी मिसेज है जी राजविंदर कौर खिंदरी,
0: जी?
1: मेरे बेटे जी आ परविंदर सिंह खिंद,
0: जी
1: मेरी बेटी आ रुपिंदर रूबी,
0: जी जी
1: और मेरे बड़े भाई साहब और भी परमजीत सिंह, और भी पिंड च मेरे बहुत जानकार आ जो मैनू पिछले फोन करके भी कहते रहते हैं जी तुम प्रोग्राम ना करो।
0: जी
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: असीं भी आज तुहाडे तो एक अर्ज कर रहे हैं भी तुसीं भी हुण प्रोग्राम दे नाल दुबारा जुड़ो, खत लिखो, मेल करो ते फोन भी करया करो। जी, बहुत पुराने जदों प्रोग्राम शुरू होया सी उसे दिन तो लगातार तुसीं जुड़े हुए हो प्रोग्राम दे नाल। जी जी जी जी जरूर साहब, जरूर जरूर, सानू भी बस तुहाडे जिहड़े खाता तुहाडे मेल आ उन्हां दी उड़ीक रहूगी साहब। हाँ जी हाँ जी, ते बेदल साहब फिर
1: कलाकार
0: अज कलाकार दस तू केड़ा सुनाइए तुहानू? जरूर साहब जरूर। ते बेदल साहब फोन करने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा।

0: हेलो मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम।
1: हाँ जी, मैं पूर्ण बोल रहा हूँ बासरगाम से। हाँ,
0: की हाल है पूर्ण जी?
1: बड़े वधिया जी, आपसे सुनाओ।
0: जी बहुत वधिया बहुत वधिया, तुहाडे नाल गलबात करके होर भी वधिया होगी जी।
1: साढ़े तो अज वधिया हो गए जी, आपदे वधिया हो जाते। कारोबार
0: हाँ जी, और पूर्ण जी की, पूर्ण जी और कारोबार की अपना?
1: तो जी मजदूरी करता, पहला तो मैं ड्राइवरी करता सी, हुण छत छोड़ के। हाँ
0: अच्छा, चलो बहुत वधिया साहब, अपना कारोबार जरूरी आ, काम धंधा
1: हाँ
0: जरूरी आ।
1: हाँ जी
0: पूर्ण जी
1: हाँ जी
0: तुहाडे नाल प्रोग्राम होर कौन कौन सुनदे आ?
1: और है जी, एक राजा है जी, चार चक का मेरा भरा द्रौपदी है जी,
0: जी
1: ते पोती है कंचन,
0: हाँ जी
1: ते पोता है मोहित।
0: जी
1: हाँ बस यही सुन,
0: ते अज फिर कलाकार केड़ा सुनाइए तुहानू?
1: मानक जी सुना दो जी।
0: कुलदीप माणक है ना? ठीक है, शुक्रिया जी बहुत बहुत फोन करने वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मिट्टी दी खुशबू। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया और प्रस्तुति थी दुर्गाराम की। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

ये मधुर आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था ललकार। इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

फिर प्यार ना कैसे हो, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन की धुन, आवाज़ें मुकेश और लता मंगेशकर की, और फिल्म संयोग का ये गीत आपने सुना।

पोस्ट बॉक्स 999। ये है इस फिल्म का नाम, जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

गीत हसरत जयपुरी का है, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं, फिल्म का नाम है लव मैरिज।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमे आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से बलविंदर कल्याण के साथ। लीजिए सुनते हैं छाया फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में।

0: அப்படியா?
1: दोस्तों समा अनुमति नहीं दे रहा इस गीत की प्यास अपने दिल में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी।

0: श्रीलंका समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।